मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र और सरायपाली केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के बैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले लीजिए सुनिए मनोहर पटोरिया मधुर और साथियों के स्वर में ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, इस देशभक्ति गीत के साथ आइए अब सुनते हैं ये भजन किशोरी अमूनकर के स्वर में। रचना मीराबाई की है।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन। आलेख श्री रमेश चंद्र मेहरोत्रा का है।
1: स्वस्थ का मतलब है जो स्वयं में स्थित हो, और स्वास्थ्य का मतलब है स्वस्थ रहने की स्थिति। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य मन और शरीर दोनों दृष्टियों से उत्तम होता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की पहली आवश्यकता रहता है, जिसके अभाव में मनुष्य रोगग्रस्त कहलाता है। पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ रहने के लिए जितना संतुलित और सुपाच्य भोजन चाहिए, उतना ही शरीर की आवश्यकता के अनुसार आराम चाहिए। पर बात यहीं पूरी नहीं हो जाती। तीसरी आवश्यक वस्तु है कसरत, जो खेलकूद, आसन, प्राणायाम, टहलाई घुमाई आदि किसी भी रूप में हो सकती है। कहने की जरूरत नहीं है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात आवश्यकता से अधिक होना हर क्षेत्र में मना है। बीमार न पड़ना एक नियामत है, लेकिन यदि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर और वैद्य कहाँ जाएंगे? दरअसल आजीवन पूर्णतः स्वस्थ रह पाना बिरलों का ही काम है। उसके लिए हमें हमेशा और बेहद सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। 100 में 100 नंबर लाना आसान

0: यद्यपि उसके मापदंड युवावस्था की स्वस्थता के मापदंडों से भिन्न रहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति अपने दीर्घ अनुभवों के आधार पर कितनी ही बार युवाओं पर भारी पड़ते हैं, शारीरिक बल से न सही वे अपने मन के बल से अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। ठीक ही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नौकरी से रिटायर होने की उम्र 60 और 62 रहती है, जिसे 65 करने की मांगे चलती रहती हैं। कहा जाता है कि इसके आगे आदमी सठिया जाता है और कार्यक्षमता की दृष्टि से उसका शरीर ढीला पड़ता जाता है। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कार्य करने वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। व्यापारी वर्ग भी पर्याप्त लंबी उम्र तक अपना व्यापार संभाले रखता है। सिद्ध है कि उम्र चाहे कुछ भी हो, मन और शरीर का स्वस्थ रहना कामधाम और सही जीवन यापन की दृष्टि से सर्वोपरि है। बड़े लेखकों की लेखनी समाज हित में उम्र के नाम पर रुकने का नाम ही नहीं लेती। बुजुर्गों द्वारा किया गया हमारा पालन पोषण आदि हम पर उनका ऋण होता है, जिसे चुकाना हमारा कर्तव्य होता है। यदि हम उन्हें स्वस्थ रखते हैं तो अपना ही स्वार्थ पूरा करते हैं, क्योंकि उनका अर्जित और संचित ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख श्री रमेश चंद्र मेहरोत्रा का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरित मानस, स्वर ए हरिहरन के, संगीत निर्देशक सतीश भाटिया।
1: एपिसोड 168।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषाद राज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचान कर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

0: रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए क्रम हमारा पशुधन में नवजात बछड़ों की देखभाल की जानकारी। जानकारी देंगे डॉक्टर गोविना देवांग।
1: नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर गोविना देवांगन, सहायक प्राध्यापक वेटनरी पॉलिटेक्निक महासमुंद। हम आज नवजात बछड़ा मन के देख रेख के बारे में बात करेंगे। नवजात बछड़ा के जन्म के पहले ही देखभाल की शुरुआत हो जाते। स्वस्थ बच्चा प्राप्त करे के खातिर उकर जन्म के पहले ही मादा के पोषण के ध्यान रखे चाहिए। गाय के गर्भकाल के अंतिम 2 माह में ही गाय ल हरा चारा और कंसंट्रेट मतलब दाना, खनिज और विटामिन देना चाहिए। गाय ल प्रतिदिन कैल्शियम और फास्फोरस की उचित मात्रा प्रदान करना चाहिए। जन्म के समय गाय से जब बच्चा पैदा होता है उस समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि श्वास संबंधी। जन्म के समय बच्चा, नवजात जो बच्चा है वह सांस ले उसके लिए नाक पर से रखा हुआ म्यूकस हटाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए नवजात के सिर को 1 मिनट के लिए नीचे करके उसकी नाक को हल्के से दबाकर छोड़ना चाहिए, जिसके कारण उसके अंदर भरा हुआ म्यूकस बाहर निकल जाता है। या तो हम नवजात के वक्ष को हथेली के बीच में रखकर हल्के से दबाकर ढीला करने से भी उनके श्वास फिर से शुरू हो जाती है। तीसरा तरीका हो सकता है, नवजात के मुंह में फूंक मार सकते हैं, या तो हम अमोनिया हाइड्रोक्साइड की बोतल को थोड़ी देर के लिए उनके नथुनों के पास यदि हम छोड़ते हैं तो उनमें सांस लेना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, हमें तापमान पे देना चाहिए। नवजात को ठंड से बचाना बहुत जरूरी होता है। यदि माँ किसी कारणवश स्वयं उठकर नवजात बच्चे को नहीं चाटती है तो नवजात बच्चे के शरीर को सूखे कपड़े या बोरे से पोंछकर सुखा देना चाहिए। यदि बाहर का तापमान बहुत ठंडा 3 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है तो नवजात को शीत से बचाने के लिए जूट के जैकेट पहना देने चाहिए या गर्म कपड़े से ढक देना चाहिए। अगली बात, हमें नाभि नाल पर ध्यान देनी है। यदि नाभि नाल स्वयं से नहीं टूटा हुआ है तो हमें नाभि से 2 से 3 सेंटीमीटर दूरी से नाल को स्टरलाइज्ड कैंची या ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन या बीटाडीन लगा देना चाहिए तथा नाभि नाल को बाद में भी 4 से 5 दिन तक टिंचर आयोडीन लगाते रहना चाहिए। अगला, हमें नवजात बच्चे को खड़ा होना सिखाना चाहिए। बच्चा स्वयं से खड़ा होकर माँ के थनों तक पहुंचकर दूध पीने लग जाता है तो वह बहुत उत्तम है, मगर यदि बच्चा स्वयं से खड़ा नहीं हो पाता है तो उसे खड़े होने में मदद करनी चाहिए। नवजात बच्चे को खिलाने की बात की जाए तो सबसे पहला जो माँ का दूध होता है जिसे अमृत पीयूष या कोलेस्ट्रम कहा जाता है और छत्तीसगढ़ी में हम खीस कहते हैं, वह पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। शुरुआत के 24 घंटे के अंदर यह कोलेस्ट्रम खीस नवजात पशु बच्चे को मिल जाना चाहिए। बच्चे के 72 घंटे तक यह कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है और बच्चों को कितना कोलेस्ट्रम पिलाना है यह है 1/10। शरीर का वजन यदि 10 किलो है तो 1 किलो कोलेस्ट्रम नवजात बच्चे को दिन भर में पिलाया जाएगा। इसे 3 से 4 भागों में बांटकर कोलेस्ट्रम को पिलाया जाता है। 3 दिन के बाद बच्चे को दूध पिलाया जाता है जिसे पूर्ण दूध कहा जाता है, क्योंकि जब गाय प्रसव करती है तो 3 दिन तक कोलेस्ट्रम स्रावित होता है और 3 दिन के बाद दूध का स्त्राव चालू हो जाता है और इस दूध को ही बछड़े को पिलाना चाहिए और इसकी मात्रा भी 1/10 शरीर के भाग के अनुसार होनी चाहिए। यह पूरी मात्रा पूरे दिन भर में 3 से 4 भागों में विभाजित करके उन्हें पिलानी चाहिए। 15 दिन के बाद गाय के बछड़े को पूर्ण दूध के साथ साथ स्प्रेटा दूध का भी पिलाना स्टार्ट करना चाहिए। 2 माह से 3 माह के बीच में गाय के बछड़े को स्प्रेटा दूध की मात्रा अधिकतम 3.5 लीटर रखना चाहिए और इसके बाद 12वें सप्ताह से 1 किलोग्राम प्रतिदिन दाना देना शुरू कर देना चाहिए। जब बछड़ा 3 माह से 4.5 महीने का हो जाता है तो स्प्रेटा दूध की मात्रा धीरे धीरे घटाकर 2 किलो कर देनी चाहिए और दाने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर 1.25 किलो कर देते हैं। जब बछड़ा 4.5 से 6 माह का होता है तो इस अवधि में स्प्रेटा दूध को 1 किलो और दाने का मिश्रण 1.5 किलो प्रतिदिन देना चाहिए। दानों को खिलाने के लिए जो नवजात बछड़े हैं उनको 6 माह के बाद हम चारागाह में खिलाने के लिए भेज सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारा पशुधन में नवजात बछड़ों की देखभाल की जानकारी अभी आप सुन रहे थे। जानकारी दे रही थी डॉक्टर गोविना देवांग। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में आइए सबसे पहले आपको आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज प्रातः 7:05 पर सुनेगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। आपके पत्र पत्रों के पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। 9:00 सुनिएगा कार्यक्रम गांधी चर्चा में महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगी मीनू पुरुषोत्तम। दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगे मेहदी हसन और साथ ही शाम 6:30 पर कलाकार होंगी ललिता शर्मा और अशोक श्रीवास्तव।

सुनिएगा सरोद वादन, कलाकार होंगे पंडित बुद्धदेव दास। सुबह 11:05 पर सुनेगा श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। दोपहर 1:30 पर सुनेगा रूपक, प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुनेंगे आज शाम 5:05 पर। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। इसमें सुनिएगा आजकल जीवन में उद्देश्य का महत्व, इस विषय पर चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे पत्र मिला और युगल गीत। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा आज शाम 7:21 पर। इसमें सुनिएगा आज की बात। आज की बात क्रम के अंतर्गत पत्रोत्तर पर आधारित क्रम चिट्ठे मिले, साथ ही सुनिएगा चर्चा। विषय होगा फल के प्रसंस्करण ला अपनाव, अधिक लाभ कमावो। आज की सलाह में डॉक्टर रेखा सिंह जानकारी देंगी गर्मी मास स्वास्थ्य वर्धक पेय और खाद्य पदार्थ के बारे में। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी

0: तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

नमस्कार। रायपुर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह के सुनहरी बेला में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है, कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने का और सबसे जरूरी कुछ नया सीखने का। जीवन में वास्तव में एक ऐसी पाठशाला है, या यूं कहें जीवन वास्तव में एक ऐसी पाठशाला है जहां हर दिन कोई ना कोई अनुभव हमें कुछ सिखा कर जाता है। कभी सफलता हमें आत्मविश्वास सिखाती है तो कभी असफलता धैर्य और संघर्ष का महत्व समझाती है। सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, हम प्रकृति से भी सीखते हैं, रिश्तों से भी सीखते हैं, बच्चों की मुस्कान से भी सीखते हैं और समय की कठिनाइयों से भी सीखते हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी वहीं रुक जाती है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित है, लेकिन सच तो ये है कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक स्वयं जीवन ही होता है। जब कोई छोटा बच्चा गिर

पर फिर उठना सीखता है, तब वो हमें भी ये संदेश देता है कि हार के बाद फिर खड़े होना ही असली हिम्मत है। एक किसान हमें धैर्य सिखाता है। वो बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वो मेहनत करता है, इंतजार करता है और विश्वास रखता है। इसी तरह जीवन में भी हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, रिश्ते हमें संवेदनशील बनाते हैं और समय हमें आगे बढ़ना सिखाता है। तो चलिए आज का विचार नोट कर लेते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि अनुभव हर उम्र में नया होता है। बातें अभी और भी है दोस्तों, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: श्रोताओं, आज के समय में जानकारी बहुत है, लेकिन सही सीख लेना सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के संस्कार, अनुशासन और संवेदनशीलता भी सिखानी चाहिए, और ये सीख सबसे पहले घर से शुरू होती है। छुट्टियों का समय बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। नई किताबें पढ़ने का, कोई कला सीखने का, दादा दादी की कहानियाँ सुनने का और परिवार के साथ समय बिताने का। मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर अगर बच्चे प्रकृति और लोगों से जुड़ें, तो वो जीवन की असली सीख पा सकते हैं। सीखना केवल करियर के लिए नहीं दोस्तों, बल्कि बेहतर इंसान बनने के लिए भी जरूरी है। साथियों, आज के समय में सीखना रोजगार से भी सीधे जुड़ गया है। जो व्यक्ति समय के साथ नई चीजें सीखता रहता है, उसके लिए अवसरों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आज कई युवा कंप्यूटर स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और नई तकनीकों को सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या गृहिणी हैं, हर दिन थोड़ा समय खुद को बेहतर बनाने के लिए लगाइए, क्योंकि दुनिया बदल रही है और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो किसी ना किसी मोड़ पर आपका मार्ग अवश्य बनता है। सीखना केवल शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। हर दिन, हर अनुभव, हर मुलाकात हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। बस जरूरत है खुले मन से उसे स्वीकार करने की। याद रखिए दोस्तों, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है वही जीवन के सही मायने सीखता है।

श्रोताओं, अब कुछ बातें करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में बचत के महत्व की। दोस्तों, जीवन में कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही तरीके से बचत करना। छोटी छोटी बचतें ही आगे चलकर बड़े सहारे बनती हैं। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से संसाधनों और धन की समझदारी से बचत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बचत केवल पैसे की नहीं बल्कि पानी, बिजली, समय और ऊर्जा की भी होनी चाहिए, क्योंकि बचत का अर्थ केवल भविष्य के लिए धन जमा करना नहीं बल्कि जिम्मेदार जीवन शैली अपनाना भी है। चलिए जानते हैं कि बचत की आदत, उसके महत्व और कैसे छोटी छोटी कोशिशें हमारे भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि बचत तब होगी जब आमदनी ज्यादा होगी, लेकिन सच तो ये है कि बचत की शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतें, अनावश्यक खर्च कम करें, बिजली और पानी व्यर्थ ना बहाएं, जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें, तो ये आदत धीरे धीरे बड़ी बचत में बदल जाती है। हमारे पुराने समय में भी बूंद बूंद से घड़ा भरता है जैसी कहावतें हमें यही सिखाती हैं। बचत की सबसे अच्छी शिक्षा घर से शुरू होती है। जब बच्चे अपने माता पिता को समझदारी से खर्च करते देखते हैं, तो वो

भी वही सीखते हैं। तो श्रोताओं, अपने बच्चों को सिखाइए, पानी का नल खुला ना छोड़ें, कमरे से निकलते समय लाइट बंद करें, भोजन उतना ही लें जितना खा सकें और पॉकेट मनी का थोड़ा हिस्सा जरूर बचाएं। ये छोटी बातें आगे चलकर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाती है। और दोस्तों, बचत केवल पैसे की नहीं, समय की बचत भी बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख जाता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है। आज के समय में आर्थिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक आने वाली परिस्थितियों में वही व्यक्ति संभल पाता है जिसने थोड़ी थोड़ी बचत की हो। चलिए कोशिश करते हैं आपको बचत के कुछ सरल उपाय बताने की। हर महीने आय का एक छोटा सा हिस्सा अलग रखें। डिजिटल भुगतान के साथ खर्च का हिसाब रखें। अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी से बचें और भविष्य के लिए छोटी निवेश योजनाओं की जानकारी लें। इस तरह बिजली और पानी की बचत भी देश के हित में एक बड़ा योगदान है। श्रोताओं, आज की समझदारी कल की सुरक्षा बनती है। बचत केवल एक आदत नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की नींव है। चाहे पैसे की बचत हो, समय की हो या पानी और बिजली जैसी अमूल्य संसाधनों की, हर छोटी कोशिश देश और समाज के लिए बड़ा योगदान बन सकती है। समझदारी से किया गया छोटा सा प्रयास भविष्य को मजबूत बना देता है।

दोस्तों, गर्मी बढ़ते ही पानी की समस्या भी बढ़ने लगती है। कई इलाकों में लोग पानी के टैंकरों पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में टैंकर समय पर पहुंचे, सही जगह पहुंचे और व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसी दिशा में नगर निगम रायपुर अब एक नई डिजिटल पहल करने जा रहा है। अब पानी के टैंकरों की बुकिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य है टैंकरों की मनमानी रोकना, शिकायतों को कम करना और पानी की चोरी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाना। अब जरा सोचिए कि इस डिजिटल व्यवस्था से क्या बदलेगा। नई व्यवस्था के तहत नागरिक घर बैठे मोबाइल ऐप से पानी के टैंकर के लिए आवेदन कर सकेंगे। बुकिंग के बाद टैंकर किस क्षेत्र में जा रहा है, इसकी जानकारी भी डिजिटल रूप से दर्ज होगी। इससे लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। टैंकर आवंटन अधिक पारदर्शी होगा और जरूरतमंद क्षेत्रों तक पानी पहुंचने में आसानी होगी। ये पहल डिजिटल इंडिया की सोच को भी आगे बढ़ाती है, जहां तकनीक के माध्यम से नागरिक सुविधाओं को सरल बनाया जा रहा है। पानी बचाना भी उतना ही जरूरी है दोस्तों। केवल व्यवस्था बदलने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। पानी की बचत और जिम्मेदार उपयोग हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए अब कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें समझें। जरूरत न हो तो नल खुला न छोड़ें। पानी का दुरुपयोग न करें। घरों में लीकेज तुरंत ठीक करवाएं और वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा दें। जल है तो कल है, ये केवल नारा नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की सच्चाई है। श्रोताओं, नई डिजिटल व्यवस्था से नागरिकों को सुविधा तो मिलेगी ही, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अगर हर नागरिक ईमानदारी से केवल जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग करे तो जल संकट की स्थिति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में पानी सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक होगा, इसलिए आज से ही इसकी बचत और सही उपयोग की आदत डालना बेहद आवश्यक है। याद रखिए साथियों, तकनीक सुविधा दे सकती है लेकिन संसाधनों की सुरक्षा हमारी सोच से ही संभव है। तो दोस्तों, रायपुर में पानी की व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि डिजिटल व्यवस्था से लोगों को राहत मिलेगी और पानी की बर्बादी और चोरी जैसी व्यवस्था या समस्याओं पर भी नियंत्रण होगा। तो श्रोताओं, पानी बचाइए, जिम्मेदार बनिए और तकनीक का सही उपयोग कीजिए।

दोस्तों, शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखाती है। और जब किसी बच्चे के सपनों को आर्थिक सहयोग मिल जाए तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पहल की जिसने वनांचल क्षेत्रों के हजारों बच्चों के चेहरे पर नई उम्मीद जगाई है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार ने बड़ी सहायता प्रदान की है। ये सहायता विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी आजीविका काफी हद तक तेंदुपत्ता संग्रहण पर निर्भर होती है। ये पहल केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से भविष्य संवारने का भी एक प्रयास है। दोस्तों, ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में कई प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है, लेकिन संसाधनों की कमी उनके रास्ते में बाधा बन जाती है। ऐसे में छात्रवृत्ति योजनाएं बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती हैं, परिवारों का आर्थिक बोझ कम करती हैं और समाज में शिक्षा के प्रति विश्वास

आवाज बढ़ाती हैं। विशेष बात यह है कि इस सहायता में केवल सामान्य शिक्षा ही नहीं दोस्तों, बल्कि तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। जब शिक्षा का हाथ थाम ले सरकार, तो सपनों की राह आसान हो जाती है। तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य मेहनत और संघर्ष से जुड़ा होता है। ऐसे परिवारों के बच्चे जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, तो वो केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल देते हैं। आज शिक्षा ही वह शक्ति है जो गांव, जंगल और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को भी नई पहचान दे रही है। अगर सही मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहे, तो यही बच्चे भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिलना एक मजबूत समाज की पहचान है। तो दोस्तों, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को दी गई ये छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके सपनों और आत्मविश्वास को मजबूती देने वाला कदम है। उम्मीद है कि शिक्षा की ये रोशनी वनांचल के और भी घरों तक पहुंचेगी और हजारों बच्चे अपने जीवन को नई दिशा दे पाएंगे।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: 10वीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: दोस्तों, जब किसी महिला को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है तो केवल उसका जीवन ही नहीं बदलता बल्कि पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। आज हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की एक ऐसी योजना की जो महिलाओं और श्रमिक परिवारों को रोजगार और आत्मविश्वास से जोड़ने का प्रयास कर रही है, दीदी ई रिक्शा योजना। आइए समझते हैं क्या है दीदी ई रिक्शा योजना। ये योजना खास तौर पर महिलाओं और पंजीकृत श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को ई रिक्शा खरीदने के लिए शासन की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना भी है। दोस्तों, आज के समय में स्वरोजगार आत्मनिर्भर बनने का एक मजबूत माध्यम बन चुका है। ई रिक्शा जैसे साधन न केवल रोजगार का अवसर देते हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं। इस योजना से जुड़कर महिलाएं स्वयं का रोजगार शुरू कर सकती हैं, परिवार की आय बढ़ा सकती हैं और आत्मविश्वास के साथ समाज में अपनी नई पहचान बना सकती हैं। जब अवसर और आत्मविश्वास साथ मिल जाएं तो सफलता की राह आसान हो जाती है। आवेदन और पात्रता की जानकारी इस प्रकार है। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज में श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक की छायाप्रति जैसे दस्तावेज शामिल हैं। योजना का लाभ पंजीकृत महिला श्रमिक अथवा महिला श्रमिक समूहों को दिया जा रहा है। ये पहल महिलाओं को रोजगार के साथ सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई दिशा देने का प्रयास। दोस्तों, जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज में दिखाई देता है। सरकार की ऐसी योजनाएं केवल सहायता नहीं देती बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर भी देती है। आज जरूरत है सही जानकारी तक पहुंचने की, योजनाओं का लाभ लेने की और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने की। स्वरोजगार केवल कमाई का जरिया नहीं बल्कि आत्मसम्मान का आधार भी है। तो दोस्तों, दीदी ई रिक्शा योजना महिलाओं और श्रमिक परिवारों के लिए एक सकारात्मक पहल बनकर सामने आ रही है, जो रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई राह खोल रही है। उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुंच रही है और इस जानकारी को लेकर इसका लाभ भी वो जरूर उठाएंगे और अपने सपनों को नई दिशा देंगे।

दोस्तों, बदलते समय के साथ शहरों की सुविधाएं भी लगातार आधुनिक होती जा रही हैं। अब रसोई गैस की सुविधा को और आसान और व्यवस्थित बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में अब छत्तीसगढ़ शहर गैस वितरण नीति 2026 लागू की जा रही है, जिसके तहत घरों तक पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी नेटवर्क के विस्तार का रास्ता आसान बनाया जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य है लोगों तक सुविधाएं जल्दी पहुंचाना, गैस कंपनियों की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाना और शहरी सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप देना। दोस्तों, इस नई नीति की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी गैस कंपनी के आवेदन पर संबंधित विभाग 15 दिनों के भीतर निर्णय नहीं लेता तो आवेदन स्वतः ही स्वीकृत माना जाएगा। इस काम में अनावश्यक देरी होने से बचेगी, कंपनियों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और नागरिकों तक सुविधाएं तेजी से पहुंचेंगी। साथ ही सरकार ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू करने जा रही है, जिससे विभिन्न विभागों की मंजूरी एक ही मंच पर मिल सकेगी। तकनीक और सरल व्यवस्था जन सुविधाओं को और बेहतर बनाती है। नई नीति के तहत अब नए मकानों और व्यावसायिक भवनों में निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन की सुविधा देना भी अनिवार्य किया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि भविष्य में लोगों को अलग से पाइपलाइन बिछाने की परेशानी नहीं होगी और घरों तक सुरक्षित और सुविधाजनक गैस आपूर्ति संभव की जा सकेगी। ये कदम आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। दोस्तों, पाइपलाइन गैस और सीएनजी जैसी सुविधाएं केवल सुविधा ही नहीं देती बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार होती है। सीएनजी से चलने वाले वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं, ईंधन की बचत करते हैं और पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत बेहतर माने जाते हैं। आने वाले समय में ऐसी व्यवस्थाएं शहरों को अधिक स्वच्छ और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सुविधा और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ चलें, यही आधुनिक विकास की पहचान है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की नई शहरी गैस वितरण नीति लोगों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने और प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उम्मीद है कि इससे घरों तक पाइपलाइन गैस की सुविधा तेजी से पहुंचेगी और लोगों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

और श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए इजाजत अपनी साथी सुषमा को इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में फिर हो

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश

0: भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून

0: कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की तीन दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने सातवें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चार पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और छह दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की

0: संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office and secrecy to Mr. Rangasamy. More from our correspondent.
4: In stark contrast to the post-election political drama witnessed in neighbouring states, Puducherry

0: आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक
1: और सीमा शर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार सीमा जी, देखिए
1: जी,
0: गर्मी का मौसम आते ही हमारे श्रोता घर से बाहर निकलना जरा कम कर देते हैं या बाहर निकलते समय गर्मी का ध्यान रखते हैं, सुबह और शाम के समय ज्यादा बाहर निकलते हैं। लेकिन हमारे श्रोताओं के घर से पोस्ट कार्ड जो हैं वो बिल्कुल समय पर निकल जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और ईमेल तो डायरेक्ट हमारे पास उनके मोबाइल से आ जाते हैं
1: जी,
0: है ना। तो ये पहला पोस्ट कार्ड आपके हाथ में किसका है?
1: ये पहला पोस्ट कार्ड है खैरागढ़ से पुष्पलता अग्रवाल का
0: जी।
1: ये लिखती हैं, मोर भुया माँ जयंती यादव के हमर संस्कृति हमर कलाकार, ये भेंट वार्ता दिल्ला छूलेस। एक लोकप्रिय गायिका के गरीबी और संघर्ष के कहानी और वो समय के सांस्कृतिक वातावरण और हबीब तनवीर के साथ उकर यात्रा बड़ा निक लगीस। 80 वर्ष के होए के बावजूद उकर गायकी अभी भी दमदार है। सचमुच जयंती यादव छत्तीसगढ़ के हीरा है। हर कलाकार के सफलता उकर संघर्ष के कहानी कही थे।
0: सीमा जी, जयंती यादव जी से की गई इस लंबी बातचीत के 3 भाग मोर भुइया कार्यक्रम में प्रसारित हुए हैं
1: जी,
0: और इन तीनों ही भागों में बहुत रोचक उनसे बातचीत की नेमीचंद साहू जी ने। और वाकई ऐसे कलाकारों से मिलकर हमें भी बहुत खुशी होती है, और उनके अनुभव के साथ इतिहास की बातें जब वे बताते हैं तो श्रोताओं को भी सुनकर बहुत आनंद आता है। और ऐसे ही कलाकारों से आज की पीढ़ी के कलाकार प्रेरणा लेते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: अब ये अगला पत्र है शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश और सचिन वर्मा का। ये लिखते हैं, 25 अप्रैल को डॉक्टर नवनीत जैन जी का चिंतन आलेख सुख का आधार शिक्षाप्रद और प्रेरणास्पद लगा। सुख का ताला केवल सुख और संतुष्टता की चाबी से ही खुलता है। मनुष्य सुख की खोज आदिकाल से कर रहा है और इसी की प्राप्ति उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा है। दुख से वो इतना घबराता है कि इससे कोसों दूर रहना चाहता है और आगे आने वाले जीवन के लिए भी ऐसी व्यवस्था करना चाहता है कि वहां भी सुख का उपयोग कर सके। जन्नत और स्वर्ग, मोक्ष और निर्वाण सब उसी आकांक्षा की रचनाएं हैं। मनुष्य स्वभावतः सुख चाहता है। नवनीत जी के आलेख का हर शब्द गहरी छाप छोड़ता है। इतनी गहरी प्रेरणाओं के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आलेख को

0: कर नए चिंतन करें। निश्चित ही हमें शांति और संतुष्टि मिलेगी और हम वर्तमान के लिए कार्य करें और भूतकाल को छोड़ दें। 1 मई को श्रमिक दिवस और प्रेरक जानकारी नमस्कार रायपुर कार्यक्रम में मिली। श्रेया श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर लिखते हैं, जिस घर में नारी का सम्मान बरकरार है वहाँ शांति, शालीनता, खुशियों का अपार भंडार है। देवी देवताओं का वास है वहाँ पर। नारी को कमजोर नहीं सहजोर समझें, उनके शक्ति को नमन। नारी पर 4 मई का प्रसारण चिंतन में महात्मा गांधी जी के विचार जानने को मिले, जो कि सार गर्भित थे। आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई।
1: सीमा जी, अलग अलग दिन प्रसारित चिंतन की तारीफ में और समीक्षा में देखिए कितने सारे पत्र मिले हैं, और हमारे श्रोता चिंतन को सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, बल्कि उन चिंतन को सुनकर स्वयं भी चिंतन करते हैं और अपने विचारों को इन पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारे श्रोता उस चिंतन को आत्मसात कर अपने व्यवहार में भी उसका अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगला पोस्ट कार्ड किसका है?
0: ये है भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी और रेहाना बेगम का। ये लिखते हैं, 29 अप्रैल को आपके पत्र में इस माह के श्रोता के तहत पोटिया कला दुर्ग की श्रोता बहन सुजाता साहू से दीपक खटवार जी की बातचीत सुनी गई, जो कि हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी बातचीत करने पर तहे दिल से आप सभी को बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये पत्र है हथनी पारा भाटापारा से चोवाराम और हरीश वर्मा का।
1: हमारे इस माह के श्रोता के रूप में सुजाता साहू जी ने अपने विचार व्यक्त किए और आकाशवाणी रायपुर के प्रसारणों से उनका बहुत पुराना रिश्ता है सीमा जी, और उन्होंने अपने अनुभवों को भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। तो अब इस माह भी हमारे श्रोता का हमें इंतजार है कि देखेंगे इस माह के आखिरी बुधवार को हमारे साथ कौन से श्रोता होंगे। और ये अगला पोस्टकार्ड किसका है?
0: मोहंदी महासमुंद से रोशनी छाया दीवान लिखते हैं कि 29 अप्रैल को प्रसारित नाटक छोटे छोटे सुख बहुत शिक्षाप्रद लगा।
1: भाई, हमारे केंद्र से समय समय पर नाटकों का प्रसारण होता है और नाटकों का ये पुनः प्रसारण भी हमारे श्रोता बहुत चाव से सुनते हैं सीमा जी, तो इस पत्र के लिए आपको धन्यवाद। और ये अगला पोस्टकार्ड किसका है?
0: अगला पोस्टकार्ड है मगर लोड से पुनुराम साहू। ये लिखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम अब सभी वर्ग के श्रोताओं के लिए अत्यंत रुचिकर बन गया है। इस बार 26 अप्रैल के कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर सार गर्भित चर्चा के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ शासन के पहल पर लुप्त हो रहे दुर्लभ काला हिरण की खोज और सुरक्षा संरक्षण के कार्य को मुक्त कंठ से सराहना करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। इससे सभी छत्तीसगढ़वासी गदगद हुए। इस अंक के छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद प्रसारण के लिए बहुत बहुत बधाई।
1: मन की बात के हर अंक में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक विचार संपूर्ण देशवासियों को देश के प्रति समर्पित होकर सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं सीमा जी, और हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम का बड़ी बेसब्री से इंतजार भी होता है। तो हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक विचारों का इंतजार करते हैं। इस पत्र के लिए आपको धन्यवाद।
0: नवागढ़ कटई से शारदा और सीमा वर्मा का कहना है कि 26 अप्रैल को देश की वाणी आकाशवाणी में पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक संजय पांडे जी से दीपक खटवार की भेंटवार्ता सुनी और ये भेंटवार्ता हमें बहुत अच्छी लगी और हम पुरानी यादों में खो गए।
1: संजय पांडे जी ने उस भेंटवार्ता के माध्यम से आकाशवाणी रायपुर से जुड़ी बहुत सारी यादों को ताजा किया सीमा जी, और उन यादों के संग केवल हमारे प्रस्तुतकर्ता ही नहीं बल्कि हमारे श्रोता भी जुड़े रहे हैं और वर्षों से हमारे श्रोता उन्हें सुन रहे हैं। तो इस तरह से आकाशवाणी की यात्रा हमारे सभी प्रस्तुतकर्ताओं और श्रोताओं के साथ आज भी निरंतर जारी है। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: बेमेतरा से सुरेश और पूर्णिमा सारथी लिखते हैं, 3 मई रविवार हमारा पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर की शानदार और जानदार सुबह की नई किरणों के साथ प्रारंभ हुआ, जिन्हें अपनी सुमधुर वाणी से प्रसारित किया प्रवीणा त्रिपाठी जी ने। आपने उचित मार्गदर्शन देते हुए बखूबी से अच्छी शिक्षा, प्रेरणा योग्य बातें और मधुरता भरे गीतों के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। भीषण गर्मी में पेड़ लगाएं और सौर ऊर्जा का प्रयोग करने की उन्होंने बातें कही। साथ में देश की वाणी आकाशवाणी के

0: अंतर्गत पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक अरविंद माथुर से दीपक खटवार की विशेष बातें प्रेरणास्पद लगी।
1: नमस्कार, रायपुर और देश की वाणी आकाशवाणी का प्रसारण हमारे श्रोता ने सुना और हमारे सभी प्रस्तुतकर्ता उद्घोषक नमस्कार रायपुर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी सामग्रियां संकलित करके लाते हैं और मधुर गीतों के साथ जब उसका प्रसारण होता है तो हमारे श्रोताओं का हर दिन एक ताजगी से भर जाता है और सीमा जी यही ताजगी श्रोताओं को पूरे दिन भर के लिए सक्रिय करती है
0: जी।
1: तो इस पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: 27 अप्रैल को लोक संगीत के कार्यक्रम में सुखचंद सोनी और साथियों द्वारा प्रस्तुत चंदैनी गीत बहुत अच्छा लगा। ये कहना है सिर्री गातापार से धनेश्वरी और ओम प्रभा साहू का। 2 मई को लोक संगीत के कार्यक्रम में विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार के गाए छत्तीसगढ़ी गीत मन को भा गए। ये कहना है नारी कोकड़ी से बुधारू राम और दुलारी साहू का। दतरेंगी से विश्राम यदु और पार्वती यदु ने 30 अप्रैल को शशांक खरे द्वारा प्रस्तुत अनुरोध गीत कार्यक्रम की तारीफ में ये पत्र भेजा है।
1: लोक संगीत की प्रस्तुतियों में छत्तीसगढ़ी लोक संगीत की अलग अलग विधाएं प्रसारित होती हैं सीमा जी, चाहे वो लोक गाथा हो या फिर छत्तीसगढ़ी गीत हो जिसमें कर्मा ददरिया सब कुछ शामिल हैं। और उनके अलावा हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों से हमारे श्रोताओं का जो रिश्ता है वो भी बहुत पुराना है और इसी मधुर रिश्ते को निभाते हुए आपके पत्र नियमित रूप से हमें प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: दीपक जी। पोस्ट कार्ड के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईमेल।
1: तो ये पहला ईमेल आपके हाथ में किसका है?
0: ये पहला ईमेल है धरसीवा से छेदूलाल यादव और सीता यादव का
1: जी।
0: ये लिखते हैं 3 मई को कानून की बात इस कार्यक्रम में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में अधिवक्ता निशा गोड़बोले द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें भारत सरकार द्वारा 0 से 18 साल के बच्चों के लिए किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। बहुत अच्छी जानकारी के लिए अधिवक्ता निशा जी और भेंटकर्ता प्रवीणा त्रिपाठी जी को हार्दिक बधाई।
1: शिवाजी, हमारे समाज में कुछ रूढ़ियां कुछ बुराइयां इस तरह की व्याप्त हैं कि जिन्हें समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया है तो उस कानून का पालन करते हुए सामाजिक बुराइयों के अंत करने का जो प्रयास किया जा रहा है उन प्रयासों में हम सबको सफलता मिले इसी कामना के साथ पत्र के लिए धन्यवाद।
0: गांव तेंदुबाटा मगरलोड से नूतन भाई निषाद और लक्ष्मी निषाद लिखते हैं 5 मई को नमस्कार रायपुर कार्यक्रम को ममता सोनी जी ने प्रस्तुत किया और बहुत बढ़िया जानकारी देते हुए इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किया गया और कम अंक वाले असफल विद्यार्थी और जो विद्यार्थी हताश हो गए अपने परिणामों से उनसे बचने के लिए जो मनोरोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर थे उनसे बातचीत उन्होंने सुनाई और ये बातचीत बहुत ही सारगर्भित लगी, जिसमें इन्होंने ये बतलाया कि बच्चों की कमजोरी को दूर करना चाहिए, उनकी कमजोरी को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। तो इस अच्छी बातचीत के लिए डॉक्टर साहब और भेंटकर्ता ममता सोनी जी का दिल से धन्यवाद।
1: नमस्कार रायपुर कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के भी विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, खासकर उनके लिए जिन विद्यार्थियों को परीक्षा में अपेक्षित सफलता नहीं मिली उन्हें बिल्कुल भी हताश नहीं होना चाहिए और फिर से एक नई शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सिंगारबाड़ी घुटकू से भगतराम पटेल और मानवी पटेल लिखते हैं प्रत्येक कलाकार अपनी कलाकारी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कश्मकश करते हैं, मेहनत करते हैं और सभी परिस्थितियों का सामना करते हैं। हमर संस्कृति हमर कलाकार मोर भुइयां के अंतर्गत 28 अप्रैल को पहला भाग और 5 मई को कार्यक्रम का दूसरा भाग छत्तीसगढ़ी गीतों की प्रसिद्ध गायिका जयंती यादव से नेमी चंद साहू की ली गई भेंटवार्ता सुनने को मिली। ये कार्यक्रम बेहद ही रोचक था और बेहद ही कर्णप्रिय था। सफल प्रसारण के लिए जयंती यादव के साथ नेमी चंद साहू को सहृदय बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है तेंदुभाटा से यशस्वी कुमार भास्कर निषाद का, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर और कचरीबाई दिवांगन का।
1: सीमा जी, हमर संस्कृति हमर कलाकार में जयंती यादव जी से नेमी चंद साहू जी की इस भेंटवार्ता की तारीफ में देखिए कितने सारे पत्र आए हैं और ऐसे कलाकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ी संगीत को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है उनके अनुभवों को आकाशवाणी के माध्यम से जानना वाकई हमारे लिए भी बहुत ही रोचक विषय है। तो इन सभी पत्रों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद।
0: ये अगले

0: मेरा ईमेल है घटारानी अंचल फुलझर से योगेश्वर साहू और डोमेश्वरी साहू का। ये लिखते हैं 6 मई की सुबह आपके पत्र कार्यक्रम लेकर आए दीपक खटवार अनुभा अग्रवाल। कार्यक्रम में श्रोताओं की प्रशंसा बधाई सुझावी शिकायत सभी तरह के पोस्टकार्ड और ईमेल बराबर शामिल किए गए और ये कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा लगा। इस बार श्रोताओं ने कार्यक्रमों की बहुत ही सुंदर समीक्षा की थी। कार्यक्रम में दीपक खटवार ने बहुत कम शब्दों में श्रोताओं के पत्रों के उत्तर दिए। ये कार्यक्रम हमारे दिल को छू गया। उत्कृष्ट और सुंदर प्रस्तुति के लिए हृदय से बधाई। हमारा एक सुझाव है, आपके पत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात्रि 8 बजे भी किया जाए। कभी कभी काम की व्यस्तता के कारण हम कार्यक्रम से वंचित रह जाते हैं। आपके पत्र के कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल मिला है देवरी भाटापारा से मुकेश और हाव्या रजक का।
1: सीमा जी देखिए, आपके पत्र के चाहने वाले हमारे श्रोताओं की तादाद कितनी ज्यादा है और कितने सारे पत्र आते हैं। और रही बात इस कार्यक्रम के पुनः प्रसारण की, तो ये तो फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि इससे अन्य कार्यक्रम प्रभावित होगा। बहरहाल आप बुधवार को ही सुबह 8:30 बजे आपके पत्र कार्यक्रम सुनिए जी। और ये अगला ईमेल किसका है?
0: ठेठवार पारा कनेरी से सनत कुमार यादव का। ये लिखते हैं, 7 मई को प्रसारित कार्यक्रम नवा बिहान में वन्य प्राणियों के संरक्षण विषय पर प्रस्तुत भेंटवार्ता अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी। इस कार्यक्रम में के सुब्रमण्यम ने नेमीचंद साहू से बातचीत करते हुए वन्य जीवों के महत्व और उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। वन्य प्राणियों का संरक्षण केवल सरकार का कार्य नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। यदि पेड़ पौधों और वन्य जीवों की रक्षा नहीं की जा सकेगी तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये कार्यक्रम समाज में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है रायपुर से रतन और कोकिला जैन का।
1: सीमा जी, वन्य प्राणी हो या वन्य पेड़ पौधे, उनकी सुरक्षा का दायित्व हम सब का है ताकि हम वन्य प्राणी और पेड़ पौधों की रक्षा कर अपने पर्यावरण का संतुलन बनाकर रख सकें। और इस जिम्मेदारी का एहसास कराता हुआ ये कार्यक्रम हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा, जानकर हमें खुशी हो रही है। पत्रों के लिए धन्यवाद।
0: नांदघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत और भाग्यश्री राजपूत लिखते हैं, 8 मई को प्रसारित भेंट वार्ता इनसे मिलिए कार्यक्रम में बहुत अच्छी लगी, जिसमें छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा से रमाशंकर की बातचीत बहुत अच्छी लगी, जिसमें पत्रकार रिपोर्ट और भारत देश एक बहुभाषीय देश और वेटलैंड बचाएं इस विषय पर जो बातचीत उन्होंने की हमें बहुत अच्छी लगी। इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में और ईमेल हमें प्राप्त हुए हैं। ये है धमतरी से रामचंद्र और सविता माखीजा का, रायपुर से भारती और वरुण राठौर का।
1: इनसे मिले कार्यक्रम के हर अंक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों को आमंत्रित किया जाता है सीमा जी, और उनके अपने कार्यक्षेत्र के अलावा उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानकर हमारे श्रोताओं को भी नई नई प्रेरणाएं मिल रही हैं। इन पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब ये अगला ईमेल है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक और के आर साहू का
1: जी।
0: ये लिखते हैं, आपके पत्र कार्यक्रम में महीने के अंतिम बुधवार को आकाशवाणी से जुड़े एक श्रोता से जो भेंट वार्ता करते हैं उसे प्रत्येक बुधवार को किया जाना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को मौका मिलेगा और श्रोताओं को ये भी कहने का मौका नहीं आएगा कि मेरा मौका कब आएगा।
1: सीमा जी, फिलहाल तो इस सुझाव को हमने नोट कर लिया है, आने वाले दिनों में देखते हैं इस पर क्या किया जा सकता है। और ये अगला ईमेल किसका है?
0: ये अगला ईमेल है अड़ार नांदघाट से चांदनी टिकेश्वरी वर्मा का। ये लिखते हैं, 9 मई को समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कवलजीत से प्रीति यादव की गर्भावस्था के दौरान देखभाल के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई हमें और ये जानकारी हमें बहुत ही प्रेरणादायक लगी। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये ईमेल है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू का।
1: डॉक्टर की सलाह का हर अंक बहुत सारी जानकारियों से परिपूर्ण होता है सीमा जी, ताकि हमारे श्रोता सदैव स्वस्थ रहें और हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें। पत्रों के लिए धन्यवाद।
0: चिरमिरी कुरासिया कालरी से लिखते हैं इंद्रभान सिंह और अनुभव सिंह। ये लिखते हैं कि 9 मई को हमन आन छत्तीसगढ़िया इस कार्यक्रम में उराव जनजाति विषय पर उनके रीति रिवाज सामाजिक

0: कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी सुनने को मिली जो काफी शिक्षाप्रद लगी। ये आकाशवाणी अंबिकापुर की प्रस्तुति थी। इसके लेखक थे श्री तपन बैनर्जी और प्रस्तुतकर्ता थे लखनलाल भौरे। और सभी लोगों की मेहनत के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे प्रदेश की विभिन्न जनजातियों पर केंद्रित इस श्रृंखला का हर अंक बहुत ही ज्ञानवर्धक है सीमा जी, और इसे हमारे श्रोता बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: तेंदुभाटा से उमेंद कुमार निषाद, देविका निषाद लिखते हैं, 9 मई को बातों बातों में कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य जनगणना निदेशक कार्तिक गोयल जी से विकल्प रंजन शुक्ला जी की बातचीत हमें सुनने को मिली। हमें गोयल जी ने यह बताया कि साल 2026-2027 में जनगणना अधिकारी हमारे घर आएंगे और इस जनगणना से आगामी 10 साल के लिए देश की जनता के लाभ के लिए सरकार कार्य योजना बनाने वाली है। जनगणना अधिकारी को पूर्ण जानकारी दें और सरकार को सहयोग करें। इस अच्छी जानकारी के लिए मुख्य जनगणना अधिकारी कार्तिक गोयल जी और भेंटकर्ता विकल्प रंजन शुक्ल जी को दिल से धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ के लिए ये ईमेल प्राप्त हुआ है रायपुर से वैभव और चिराग जैन का।
1: जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हो चुका है और इस कार्य की सफलता जन जन के सहयोग पर ही निर्भर करती है सीमा जी। जब भी जनगणना से संबंधित अधिकारी आपके द्वार तक आए तो आप उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करें। इसी कामना के साथ पत्रों के लिए धन्यवाद।
0: ये अगला ईमेल है बठीना पाटन से बलकरण वर्मा और ज्योति वर्मा का। ये लिखते हैं, 10 मई को सुबह नमस्कार रायपुर कार्यक्रम में देश की वाणी आकाशवाणी में आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक विश्वास केलकर जी से दीपक खटवार जी की बातचीत सुनी। बहुत से आकाशवाणी केंद्र पर उन्होंने सेवाएं दी हमें ये पता चला, और आकाशवाणी रायपुर में बहुत से उद्घोषकों के साथ उन्होंने काम भी किया जिसकी जानकारी हमें उन्होंने बड़े ही विस्तार पूर्वक बताई जो हमें बेहद अच्छी लगी। इस अच्छी भेंटवार्ता के लिए विश्वास केलकर जी और दीपक खटवार जी को हृदय से बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है पिपरिया से कमलकांत और दीपा रिमझिम गुप्ता का, और नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद और चंद्रकांत वर्मा का।
1: देश की वाणी आकाशवाणी के हर अंक में आकाशवाणी से जुड़े चाहे वो प्रसारक हों या कलाकार हों, हर विशिष्ट जन से की गई बातचीत हमारे श्रोता बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सीमा जी, और सभी बातचीत में आकाशवाणी से जुड़ी ढेर सारी यादें छिपी हुई हैं, और इन यादों को ताजा करते हुए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन पत्रों के लिए आपको धन्यवाद।
0: बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू योगेश्वर साहू लिखते हैं, 10 मई रविवार को सुबह सुबह रामचरितमानस में गंगा पार कराने का वर्णन हमें सुनने को मिला और संगीत सतीश भाटिया का था और कलाकार थे सुरेश वाटकर। ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत बधाई।
1: प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर प्रसारित हो रहे रामचरितमानस गान को हमारे श्रोता वर्षों से सुनते आ रहे हैं और इसके माध्यम से उनकी सुबह बहुत ही भक्तिमय हो जाती है। तो आप लगातार इसे सुनते रहें। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: ठेठवार पारा कनेरी से सनत कुमार यादव लिखते हैं, 11 मई को सुबोध पांडे का एक विचारोत्तेजक चिंतन आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित किया गया। यह प्रसारण स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आंतरिक शुद्धता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित था। चिंतन में महात्मा गांधी जी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि गांधी जी ने सदैव व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया। उनके अनुसार केवल बाहरी स्वच्छता पर्याप्त नहीं है बल्कि मन, विचार और आचरण की आंतरिक स्वच्छता से भी हम शुद्ध होते हैं। वक्ता ने यह संदेश दिया कि यदि समाज को स्वस्थ और सुंदर बनाना है तो नदियों, पर्यावरण और अपने आसपास की सफाई के साथ साथ हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। वाचक दीपक खटवार सहित आकाशवाणी परिवार को साधुवाद।
1: इन्होंने इस पत्र में कितनी अच्छी बात लिखी है सीमा जी कि हम अपने विचारों की शुद्धता के साथ साथ अपने आसपास की स्वच्छता का भी ध्यान रखें, पर्यावरण की स्वच्छता का भी ध्यान रखें। तो इस तरह से हम संपूर्ण स्वच्छता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रेरक चिंतन को गौर से सुनकर इतने अच्छे विचारों से अवगत कराने के लिए आपको धन्यवाद।
0: मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू और योगेश साहू लिखते हैं, 3 मई के आप मन के गीत कार्यक्रम को प्रस्तुत किया प्रीति यादव ने। मनमोहक प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक से बीरेंद्र कुमार गुप्ता और गजेंद्र कुमार गुप्ता लिखते हैं, 4

0: मई के दिन सोमवार को हमन ला फोन कराओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम सुने बर मिलिस, जेला प्रस्तुत करे रहीस प्रीति यादव जी हा, जेमा श्रोता संगी मन के संग काम बूता का चलत हवे एकर बारे में जानकारी मिलिस। अतका सुघर प्रस्तुति बर प्रीति यादव जी ला गाड़ा गाड़ा बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ईमेल प्राप्त हुआ है गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मिलाऊ दास मानिकपुरी का। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी और प्रमिला मरावी लिखते हैं, 7 मई के ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम में सुषमा जी ने श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल करके हमारे पसंद के बेहतरीन गाने सुनाए, जिसकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईमेल है ग्राम नेवई उतई से विक्की देवांगन और उर्वशी देवांगन का। ये लिखते हैं, सुर सिंगार ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और जिसे प्रस्तुत किया राजकुमार व्यास ने। इस कार्यक्रम में जितने भी गीत सुनाए गए सभी गीत एक से बढ़कर एक थे, मगर इसमें हमारा ईमेल शामिल नहीं हुआ तो हमें बहुत दुख लगा। बहरहाल अच्छी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये ईमेल है समडील नवापारा से मुकेश दीपक गुप्ता का और करही भदर से पुरुषोत्तम श्रद्धा निर्मलकर का। कोई ग्राम भंगी टोला से ननकाराम धुर्वे और जामुनबाई धुर्वे लिखते हैं, 9 मई को फिल्मी फरमाइशी आपके मीत ये गीत कार्यक्रम ने श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल करके हमारी पसंद के शानदार गीत सुनाए और इस लाजवाब प्रस्तुति के लिए जया सिंह और आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। टेकापार बालोस से चिंताराम यादव और रवि प्रकाश यादव लिखते हैं, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत कर राजकुमार व्यास के श्रोताओं से बात करने का अंदाज हमें बहुत पसंद आया। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को हार्दिक बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ईमेल प्राप्त हुआ है भाटापारा से बचकामल और मोतीलाल यादव का। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन लिखते हैं, छत्तीसगढ़ के पावन भुइया जेमा आनी बानी के फसल लहावात रही थे, रंग बिरंगी फूल और फल सजे रही थे। हमारे छत्तीसगढ़ किसान संगवारी मन के धान के फसल ला का कहबे लहर लहर लहरावत रही थे, जेकर सेती हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कही जाते, जेकर सौंधी सौंधी खुशबू हमर अंतस मा समा जाते, और इसने ढंग ले हमर अंतस मा समा जाते आकाशवाणी रायपुर के जम्मो कार्यक्रम बेरा बेरा में सुने बर हमला मिलते रही थे। ई क्रम मा आकाशवाणी रायपुर के सुघर माटी के सौंधी खुशबू बिखेरत आईस हमर बीच इतवार 10 तारीख के मछनिया बेरा मा हमार मायारुक संगी शुभ्रा ठाकुर हा। आप मन के गीत कार्यक्रम ला धर के शुभ्रा ठाकुर के कोयली कस मीठ मीठ बोली संग अड़बड़ अकन श्रोता संगवारी मन के ईमेल और पत्र ला पढ़ीस, जेमा हमरो नाम शामिल रही से और बढ़िया हमला गीत सुने बर मिलिस। तेकर बर शुभ्रा ठाकुर और आकाशवाणी रायपुर ला और बीरभान साहू जी ला अंतसले बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ईमेल प्राप्त हुए हैं भड़गा कोदवा गोड़ान से श्याम सिंह राजकुमारी मरावी का, कोका भिलाई से उत्तम सिंह और मोरस जंघेल का और मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार और योगेश साहू का।
1: सीमा जी देखिए हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों की तारीफ में कितने सारे ईमेल हमें मिलते हैं और कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का हो या छत्तीसगढ़ी गीतों का, हमारे सभी प्रस्तुतकर्ता इन कार्यक्रमों को सजाने के लिए जो मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत का फल ये सारे ईमेल हैं और जिन्हें पढ़कर हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबकी बधाइयाँ हम अपने सभी प्रस्तुतकर्ता उद्घोषक साथियों तक पहुँचा रहे हैं। इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब घड़ी का इशारा है कि चलने का वक्त हो रहा है, तो नोट कीजिए ईमेल आईडी raiapkepatra1@gmail.com। पोस्टकार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर पिन कोड 4920001। तो आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। अनुमति दीजिए दीपक
0: और सीमा शर्मा को नमस्कार।

आपके पत्र श्रोताओं के पत्रों पर आधारित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा में महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के हैं।

0: श्रोताओ, गांधी चर्चा के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में गांधी जी के विचार। आज सुनिए इस विचार श्रृंखला का अंतिम भाग।
1: जब गुरुदेव मृत्युशैया पर थे, मैंने उन्हें अपने आखिरी पत्र में लिखा था कि अगर ईश्वर की मर्जी हुई तो मैं दीन बंधु स्मारक की पूरी रकम वसूल कर लूंगा। दीन बंधु को शांति निकेतन की आर्थिक स्थिति की चिंता दिन रात बनी रहती थी। वह चिंता को मेरे पास बतौर धरोहर के छोड़ गए हैं। हिंदुस्तान के और मानवता के इन दो सेवकों की इस पुकार की मैं जरा भी उपेक्षा नहीं कर सकता। जिनके मन में इन दोनों महापुरुषों की स्मृति के लिए आदर है और जो गुरुदेव की सजीव कृति के मूल्य को समझते हैं, उनसे निवेदन है कि वे स्वेच्छा से लिए हुए इस दायित्व को निभाने में मेरी मदद करें। गुरुदेव की देह खाक में मिल चुकी है, लेकिन उनके अंदर जो ज्योत थी, जो उजाला था, जो तब तक बना रहेगा जब तक धरती पर जानदार रहेंगे। गुरुदेव ने जो रोशनी फैलाई वह आत्मा के लिए थी। सूरज की रोशनी जैसे हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है, वैसे गुरुदेव की फैलाई रोशनी ने हमारी आत्मा को ऊपर उठाया है। वे कवि थे और प्रथम श्रेणी के साहित्यिक थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा में लिखा और सारा बंगाल उनकी कविता के झरने से काव्य रस का गहरा पान कर सका। उनकी रचनाओं के अनुवाद बहुत सी भाषाओं में हो चुके हैं। वे अंग्रेजी के भी बहुत बड़े लेखक थे और शायद बिना अंग्रेजी जाने ही वह उस जबान के इतने बड़े लेखक बन गए थे। मदरसे की पढ़ाई तो उन्होंने की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री उन्होंने नहीं ली थी। वह तो बस गुरुदेव ही थे। हमारे एक वायसराय ने उनको एशिया का कवि कहा था। उससे पहले किसी को ऐसी पदवी नहीं मिली थी। वे समूची दुनिया के भी कवि थे। यही क्यों, वह तो ऋषि थे। हमारे लिए वह अपनी गीतांजलि छोड़ गए हैं जिसने उनको सारी दुनिया में मशहूर कर दिया।

तुलसीदास जी हमारे लिए अपनी अमर रामायण छोड़ रहे हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत के रूप में हमारे लिए मानव जाति का इतिहास छोड़ा है। वे सब निरे कवि नहीं थे, ये तो गुरु थे। गुरुदेव ने भी सिर्फ कवि के नाते ही नहीं, ऋषि की हैसियत से भी लिखा है। लेकिन सिर्फ लिखना ही उनकी अकेली खासियत नहीं थी, वह एक कलाकार थे, नृत्यकार थे और गायक थे। बढ़िया से बढ़िया कला में जो मिठास और पवित्रता होनी चाहिए, वह सब उनमें और उनकी चीज़ों में थी। नई नई चीज़ें पैदा करने की उनकी ताकत ने हमको शांति निकेतन, श्री निकेतन और विश्व भारती जैसी संस्थाएं दी हैं। अपनी इन संस्थाओं में वह भाव रूप से विराजमान हैं, और वे अकेले बंगाल को ही नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान को उनकी विरासत के रूप में मिली हैं। शांति निकेतन तो हम सब के लिए असल में यात्रा का एक धाम ही बन गया है। गुरुदेव अपने जीते जी इन संस्थाओं को वह रूप नहीं दे पाए जो वह देना चाहते थे, जिसका वह सपना देखते थे। कौन है जो ऐसा कर पाया हो? आदमी के मनोरथ को पूरा करना तो भगवान के हाथ में है। फिर भी ये संस्थाएं हमें उनकी कोशिशों की याद दिलाएंगी और हमेशा हमको यह बताती रहेंगी कि गुरुदेव के मन में अपने देश के लिए कितनी गहरी प्रीति थी और उन्होंने उसकी कितनी कितनी सेवाएं की हैं। उनके रचे कौमी गीत को आप सुन चुके हैं, हमारे

इश्क जीवन में इस गीत की अपनी एक जगह बन गई है। हजारों लाखों लोग एक साथ इसकी प्रेरणा पहुंचाने वाली कड़ियों को अक्सर गाते रहते हैं। ये सिर्फ गीत ही नहीं है बल्कि भक्ति भाव से भरा भजन भी।

0: कार्यक्रम गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनिए, चांद और सूरज फिल्म से। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत सलील चौधरी का, आवाज है आशा भोसले की।

अनपढ़। श्रोताओं, इस फिल्म से सुनिए रजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत, जिसे सुरों में बांधा है मदन मोहन ने और आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, चरित्रहीन फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए इनकी आवाज़ में सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, जिसे संगीत के सुरों में बांधा है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है गोमती के किनारे।

एक गांव की कहानी। श्रोताओं, इस फिल्म से सुनिए शैलेंद्र का लिखा ये गीत, तलत महमूद की आवाज में। संगीत सलील चौधरी का है।

एक गांव की कहानी। इस फिल्म से अभी आपने सुना तलत महमूद की आवाज में ये गीत। आइए अब सुनते हैं मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों से सजा ये गीत, जिसे संगीत के सुरों में बांधा है शंकर जयकिशन ने। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने। फिल्म का नाम है छोटी बहन।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
2: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
3: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
3: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
0: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मीनू पुरुषोत्तम। आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये गीत, जिसे लिखा है महेंद्र दहलवी ने।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आएं पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं मीनू पुरुषोत्तम। इनके स्वर में लीजिए, सुनिए बीके पुरी की लिखी ये रचना।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी मीनू पुरुषोत्तम। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर। और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2-3% दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने बताया है कि मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत GRAMJI अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वसहायता समूहों की महिलाओं और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। पालोह जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। मंगलवार शाम दल्ली राजहरा में यह हादसा हुआ। मजदूर सीवरेज पाइप बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंस गई। बताया जा रहा है कि BSP की सीवरेज पाइपलाइन विस्तार परियोजना के तहत कार्य चल रहा था। इसी दौरान JCB और चेन माउंट मशीन की मदद से खुदाई की जा रही थी। अचानक मिट्टी धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और BSP के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाला है। इच्छुक उम्मीदवार 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए kmy.gov.in पर जा सकते हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। IPL मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इससे पहले 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया था। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्र रिले करेंगे। बलरामपुर जिले के धंधापुर गांव में खनिज विभाग की टीम ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल 4 वाहनों को जब्त किया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा कल 14 मई को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान

0: आज से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से तीन मजदूरों की दबकर मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोद पर बजाया राग कुकुप बिलावल में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें। विलंबित और द्रुत दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। आपके साथ तबले पर संगत करने वाले कलाकार हैं वसंती लाल धानुक।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोद पर बजाया राग कुकुप बिलावल। तबले पर आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे बसंती लाल धानुक। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनिए फिल्म भैरवी से। गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और रूप कुमार राठौर की।

0: क्या हुआ, गाओ ना।
1: नहीं, आज मूड नहीं है।
0: मूड नहीं? अरे रियाज नहीं करना है क्या?
1: गाना मेरे बस की बात नहीं है।
0: तो फिर यही गाओ।
1: क्या?
0: गाना मेरे बस की बात नहीं। अरे हंसो मत, गाओ।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का तो फराए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

अशोका। श्रोताओं, इस फिल्म से सुनिए अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों से सजा ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत अनु मलिक का है।

अंश। श्रोताओं, इस फिल्म से सुनिए समीर का लिखा ये गीत नदीम श्रवण के संगीत में बंधा हुआ, जिसे अपनी आवाज दी है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए डुप्लीकेट फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा और संगीत के सुरों में बांधा है अनु मलिक ने। आवाजें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: ना रंगासामी कड़वलीन पेयराल उरुदी कूरुदावदु नान नेर्मुगमागवो अल्लदु मरेमुगमागवो ओरुवरुक्को अल्लदु पलरुक्को இந்திய ஒன்றியத்தின் புதுச்சேரி ஆட்சி பரப்பின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் என் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படும் அல்லது எனக்கு தெரியவரும் எந்த செய்தியையும் மேற்கூறிய முதலமைச்சர் என்ற வகையில் என்னுடைய கடமைகளை முறையாக ஆற்றுவதற்கு தேவைப்பட்டவரன்றி தெரிவிக்கவோ அல்லது வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன்.
0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवयम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा नेता अध्यक्ष वीपी रामलिंगम अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके के सरकार को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोपहर बाद वे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेय लावरोव से भी मिलेंगे। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नाशिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नाशिक से शुभम को हिरासत में लिया। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जाँच के निर्देश दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार से पहले मामूली रूप से बढ़त नजर आई और फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 75 अंक की अधिक की वृद्धि के साथ खुला और बाद में 180 अंक गिरकर 74,360 पर आ गया। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 24,350 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।

ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम सुनैया हमर जम्मू संगवारी मनला सुषमा मिश्रा के राम राम जय जोहार। आवो संगवारी हो देखथन सबले पहले या गाना सुने बर हमर कौन कौन संगवारी मन ईमेल पठोए है। तो हमार ए संगवारी मन के नाम है बघेरा दुर्गले संतोष नामदेव सार्थक नामदेव समर्थ नामदेव शौर्य नामदेव कर्मा चौक लोहारी डीह से भाई यशवंत साहू रमेशिया हर्ष अंश भाटापारा ले हैं दान सिंह रावत दानू पद्मिनी रावत शुभम सौरभ रावत ग्राम धरदी सरगांव से है चंदुलाल पटवा श्रीमती सुनीता पटवा हर्ष कुमार पटवा विनीत कुमार पटवा और कुमारी कृष्टि पटवा भाटापारा ले हैं दान सिंह रावत पद्मिनी रावत शुभम सौरभ रावत भरसुदा ले हैं हमारे संगवारी गजेंद्र सेन और चिराग सेन सरसेनी छत्तीसगढ़ ले हैं दुष्यंत कुमार सेन और जागृति सेन कवर्धा ले हैं अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी साहू लालिमा साहू खुशांत साहू और निशांत साहू। आप सबके पसंद मा आप मनला सुनवाथन अलका चंद्राकर और नारायण ध्रुव के गाए ये गीत।

संगवारी हो लोरमी ग्राम तिलकपुर ले चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार मरावी, मालती मरावी, मयंक मरावी, ग्राम बेवरा संबलपुर ले हैं शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा और वंशिका वर्मा, आदर्श ग्राम बटेना पाटन ले परमेश्वर साहू, हेजल साहू, राजेश साहू, ग्राम पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय कुमार, विनय शंकर पांडे, देवरी भाटापारा ले के आर साहू, आकाश कमलेश और मुरली

क्षत्रिय पोटियाकला दुर्गले संजय साहू सुजाता साहू ससांग साहू और सीमा साहू हटौत बाजार लाहौदले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल बनियापारा धमतरी ले हैं रामचंद माखीजा काफेर श्रीमती सविता माखीजा बेबी स्वाति माखीजा महेश कुमार कुकरेजा संध्या कुकरेजा माही पूजा छुटकी शरद कुमार डोडवानी कीरत राय वाधवानी और प्रदीप कुमार साहू आप सब संगवारी मन सुने चाहत हो भागवत साहू और संगवारी मन के गाए ये गीत।

संगवारीहो धरसीवा बस स्टैंडले छेदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, रानो खुशी, प्रवीण कुमार साहू औ इकबाल कुरैशी, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुरले छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था यादव, अनुराग।

अउ अभिषेक डुग्गू अउ कान्हा यादव नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत शारदा पुष्पांजलि वर्मा गाय अउ सहसपुर लोनमी ले छुटकू मोहित साहू राम साहू लोकेश साहू रामकिशन साहू दुलीचंद साहू सतीबाई अउ सत्यम साहू बलोदा ले हैं दिलहरण गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल समृद्धि पटेल ग्राम धुर्राबांधा पटेल धुर्राबांधा भाटा पारा ले प्रमोद साहू देव कुमार साहू नवीन कुमार साहू अउ युवराज साहू मदनपुर ले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू डोंडी लोहारा बालोद ले हैं देवशंकर तामुरिया अजय देव तामुरिया अउ तुषार देव तामुरिया डॉली बेबी पूजा तामुरिया राधिका अउ प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर आप लेवो संगवारी हो सुनो आपन पसंद मा भागवत साहू अभन सेन अउ साथी मन के ये गीत

संगवारी हो किकिर मेटा बेलहारी पाटन ले संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा, ग्राम पहरा अहिवारा ले पोषण बंछोर चंद्रकिरण बंछोर, कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव, तखतपुर ले हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, तखतपुर ले मिश्रीलाल लक्षनपुर ले रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू, लोरमी मेघापारा ले मोहर राम पटेल मानू पटेल शोभा पटेल तुला पटेल।

पटेल, पूना पटेल, बिसाहू पटेल, रसेड़ाले हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार संध्या, कीर्ति कुमार और डिगेश साहू। आप सबो संगवारी मन सुने चाहत हो बुद्धिसागर शर्मा और रजनी रजक के गाए ये गीत।

संगवारी हो मां महामाया चौक मेघापारा चिल्फी ले रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल और मनोज साहू, ग्राम पंचायत भरसदी ले घनाराम पटेल, घनाराम सेन, गीतेश सेन, दीपेश सेन, निर्मला सेन, अड़ार नानघाट ले माखन चांदनी वर्मा,

0: पलारी ले हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा। ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन। और यहीं ले हैं गायत्री यशवर्धन, यशस्वी देवांगन। ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव ले योगेश सारवा, आशा सारवा। चिरमिरी कुरसिया कलारी ले हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर। धमनी राजिम ले दुष्यंत कुमार बंजारे, आशीष कुमार बंजारे। नारायणपुर ले श्रीमती दिनेश्वरी बंजारे, मनीष कुमार बंजारे। बागबहरा भरसदी ले पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन और कौशल सेन। लेवो संगवारी हो सुनाओ आप मन आपन पसंद मा छाया चंद्राकर के गाए ये गीत।
1: मन पंछी बन उड़

ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। एक कार्यक्रम में अब आपला सुनवावथन दुष्यंत हरमुख और सुनीता आचार्य के गाए एक गीत जिला सुने बर ईमेल पठोए हवे हमारे श्रोता संगवारी मन। चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र औ रौनक सेन, बाजारवाड महासमुंद ले भीष्म दास, नर्मदा हिरमानी, दीपक लक्षदास, ग्राम नेवई उतई ले विक्की देवांगन, श्रीमती उर्वशी देवांगन, जतिन जयंत कुनिका देवांगन, टेकपार बालोद ले चिंताराम यादव, रवि प्रकाश यादव, गंडई टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन, श्रीमती कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, श्रीमती जयश्री देवांगन, ऋषभ औ ऋचा देवांगन, चरडोंगरी पिपरिया ले दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू।

हम तराई रायपुर ले हैं हीरा साहू, आमा खोड़रा रेंगा खार ले देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्ष प्रिया गिटसागरम नेताम, पलारी ले नीलू देवांगन, संजू देवांगन, ओम देवांगन, वैभव देवांगन, निधि देवांगन, भूत कछार लोरमी ले दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक मरकाम, ग्राम सिवनी खुर्द रेंगाखार ले मनसाराम पटेल, बुधिया पाई पटेल, भानु प्रताप पटेल और कुमारी पायल पटेल, भीम खोज तरपोंगी ले संतोष गुप्ता, हितेश होमेश लक्ष्मी और प्रतिभा गुप्ता, ग्राम बोगा टोला मोहला मानपुर ले कुमारी इंदु, कुमारी चांदनी सिन्हा ले वो संगवारी हो सुनो आपन पसंद मा गणेश राम यादव और साथी मन के गाए एक गीत।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: संगवारी हो कार्यक्रम में अब आपला सुनवावथन गंगादास मानिकपुरी और साथ ही मन के गाए ये गीत जिला सुने बर हमला ईमेल पठोए हवे हमर ए श्रोता संगवारी हा। रोहासी पलारी ले श्यामलाल रामदास युवराज साहू, बाजारपारा बेमित्रा ले भाई रतन, भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा, बेटी लकी सिन्हा, आर्यनगर कोका भिलाई ले हैं उत्तम सिंह जंघेल, गोरस जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला ले अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, ग्राम पंचायत बठेना पाटन ले मलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद वर्मा, दुर्ग ले हैं सुनीता यादव, सुमन यादव, डमरू यादव, पिपरियाले कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता।

यही गीत संग सिरावत है आज के ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम ए कार्यक्रम के जम्मू गीत ला जोड़े रहीन वीरभान साहू तो अब कार्यक्रम ले विदा देव सुषमाला जय जोहार।

0: श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। अभी आप सुन रहे थे, 11:55 होने को हैं, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2-3% दर्ज की गई है। ये आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत जीराम जी अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्व सहायता समूहों की महिला और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को ठोस अपश

0: इष्ट प्रबंधन नियम के क्रियान्वयन के लिए पत्र लिखा है। पत्र में सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण की स्थिति की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। विभाग ने इन कार्यों की निगरानी के लिए निकायों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के स्वच्छतम पोर्टल पर स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित प्रविष्टियों की भी जिला स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। कल शाम दल्लीराजहरा में यह हादसा हुआ। मजदूर सीवरेज पाइप बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंस गई। बताया जा रहा है कि बीएसपी की सीवरेज पाइपलाइन विस्तार परियोजना के तहत कार्य चल रहा था। इसी दौरान जेसीबी और चेन माउंट मशीन की मदद से खुदाई की जा रही थी। अचानक मिट्टी धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी केंद्र रिले करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अलावा होगी। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बीजापुर जिले में डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से नागरिकों को आपात स्थिति में तत्काल पूरी सहायता उपलब्ध हो सकेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे और दल्लीराजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: संग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है।

0: फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
0: जी,
1: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
1: जी,
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
1: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
1: जी,
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
1: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
1: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी,
1: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
1: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी,
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
0: जी,
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी,
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अकर बकर बम्बी वो 80-90-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है।

0: मुझे तो कहानी आती है।
1: तो कहानी सुना दो भाई।
0: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
1: अच्छी कहानी थी। भाई कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
0: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
1: हाँ चलो चलो, वहाँ पे चलो, पानी चलो, होगा। चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
3: कौन है?
1: दीदी।
3: कौन है?
1: दीदी।
0: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
1: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
0: हम थोड़ा पानी पी लें?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
0: हाँ हाँ,
1: बहुत ठंडा पानी था।
0: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
4: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
4: नहीं समझे?
1: नहीं।
0: नहीं।
4: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा चलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
1: अब गर्मी अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी, मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
2: हाँ
1: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं। चलो
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
4: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
2: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
2: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
5: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
5: कौन सा फल है?
2: नहीं समझी?
1: नहीं।
2: अच्छा तो फिर सुनो,

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
3: आइसक्रीम।
1: बच्चों मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा, गर्मी अम्मा। हाँ? आप बहुत अच्छी हैं। हाँ,
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
5: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
6: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
7: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
6: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
8: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
9: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.

देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया हैं।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: शायद पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
6: साहब मेरा गांव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।

0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी,
5: यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर।
5: उधर से। हाँ
2: जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर, जी सर।
2: कोई शक?
3: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
5: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
7: धीमे बोलो, धीमे।
5: जी,
7: उन्हें पता ना चल जाए।
5: जी सर।
7: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
5: जी।
7: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
5: ठीक है सर।
7: और फिर तुम

0: दिशा में एक हाथ गोला फेंकना।
1: जी सर।
0: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
1: जी सर।
0: ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
1: रेंगेंगे। जी सर।
0: कोई भी उठकर नहीं छोड़ेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
1: हाँ सर। एवरीबॉडी रेडी?
2: यस सर।
1: यस सर।
0: वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मेहंदी हसन। पहले सुनिए मेहंदी हसन की आवाज में ये रचना।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे मेहदी हसन। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है, हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल

0: संकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। आइए सुने चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले सुनिए गोल्ड फिल्म का गीत। यासिर देसाई की आवाज है, संगीत और गीत आरको का है।

अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल के स्वर में सुनिए बेशर्म फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं राजीव बरनवाल ने और संगीत ललित पंडित का है।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए रुस्तम फिल्म का गीत। आतिफ असलम की आवाज है, रचना मनोज मुंतशिर की है और संगीत आरको ने दिया है।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 1:25 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आइए पहले आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर 1:30 पर सुनिएगा संगीत रूपक मानस के मोती। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर समर बहादुर सिंह की होगी।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे, युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल का विषय होगा जीवन में उद्देश्य का महत्व। इसके अलावा होगा क्रम पत्र मिला और युगल गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर कलाकार होंगी ललिता शर्मा, अशोक श्रीवास्तव और साथी। इसी कार्यक्रम में रात 8:20 पर कलाकार होंगी मीनू पुरुषोत्तम। चौपाल शाम 7:21 पर, इसमें आज की बात में होगा पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिले। साथ ही होगा फल के प्रसंस्करण ला अपनावव अधिक लाभ कमावव। क्रम आज की सलाह में सुनिएगा गर्मी माँ स्वास्थ्यवर्धक पेय और खाद्य पदार्थ विषय पर डॉक्टर रेखा सिंह से जानकारी।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:15 पर। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की होगी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोद पर बजाया राग जय जय बंती। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संगीत रूपक मानस के मोती। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर समर बहादुर सिंह की है।
1: प्रस्तुत है संगीत रूपक मानस के मोती।

नमन के इन भाव भरे स्वरों के बीच उभरता तुलसी का अमर काव्य रामचरितमानस, मोतियों का भंडार, ज्ञान, भक्ति, दर्शन, नीति और साहित्य, सभी के मोती, एक से एक अनूठे, एक से एक आबदार, उन्हीं मोतियों का एक चयन प्रस्तुत है इस संगीत रूपक में। पहला प्रसंग

अयोध्या कांड, सीता और लक्ष्मण के साथ राम वन जा रहे थे। चलते चलते वे वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। स्वागत सत्कार के बाद राम ने पूछा, मुनिवर बताइए अब मैं कहां रहूं? वाल्मीकि असमंजस में पड़ गए। सर्वव्यापी राम को भला वे कौन ठौर बताते। फिर हंसते हुए बोले, अच्छा अब मैं बताता हूं कि आप कहां रहें। और फिर फूट पड़ी वाल्मीकि की वाणी से भक्त के लक्षणों की वह धारा, जिसका जल आज भी साधक के हृदय को सींचता रहता है।

अगला प्रसंग है अरण्य कांड का। रावण सीता को हर ले गया था। उन्हें खोजते खोजते राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचे। आराध्य को पास शबरी निहाल हो उठी, भाव विभोर और विह्वल। जो कुछ बन सका स्वागत सत्कार किया, किंतु संकोच से वो अब भी बोझिल थी। भगवान राम ने सब कुछ भांप लिया। उसे आश्वासन देते हुए उस समय उन्होंने नवदा भक्ति का जो निरूपण किया, वह तुलसी की लेखनी का स्पर्श पा मानस का एक अनमोल मोती बन गया।

मानस कथा के बढ़ते चरण। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण चले जा रहे थे। वर्षा ऋतु निकट आ गई थी, अतः दोनों भाई प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। एक ओर पावस का वह मादक रूप और दूसरी ओर प्रियतमा का वियोग। दुर्बल मानव की भांति राम कातर से हो उठे, किंतु नीति ने उन्हें संभाला। तुलसी का पावस और नीति का वह मिला जुला अप्रतिम चित्रण प्रस्तुत है कजली की इस रस भरी धुन में।

और अगला प्रसंग है लंका कांड का। लक्ष्मण मेघनाथ संग्राम चल रहा था। संकट सिर पर देख मेघनाथ ने वीर घातिनी शक्ति चलाई। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उपचार की व्यवस्था हुई और हनुमान औषधि लेने चल पड़े। आधी रात बीत चली किंतु हनुमान का कहीं पता नहीं। अब राम का रहा सहा धीरज भी जाता रहा। आकुलता के क्षणों में उनका वह मर्म भेदी विलाप और करुणा से प्लावित यह धुन।

राजा रावण और वानर भालुओं के अगुआ थे राम। रावण रथ पर आसीन था और राम बिना रथ के। यह देख विभीषण अधीर हो उठे। ऐसे भला राम रावण को कैसे हरा सकेंगे? और तुलसी को एक बार फिर अवसर मिला गूढ़ दर्शन को राम कथा के सूत्र में सहज ढंग से पिरोने का। विजय रथ की राम की वह कालजयी व्याख्या स्वरित हो रही है मानस गान की लोकप्रिय शैली एहा की धुन में।

और अंतिम प्रसंग है उत्तरकांड में वर्णित राम राज्य का, मानस का वह अनमोल मोती जो आगे चलकर गांधी जी के पथ का दीप बन गया। तुलसी की कल्पना और गांधी जी के सपनों के उस राम राज्य का चित्रण प्रस्तुत है कोमलांगी भैरवी के ख्याली परिवेश में।

0: मानस के मोती। अभी आप ये संगीत रूपक सुन रहे थे। कलाकार थे श्रीमती मीनू पुरुषोत्तम, श्रीमती पद्मजा बर्वे, कुमारी पूर्णिमा पाटिल, सर्वश्री अशित देसाई, अनुराग कुमार और भूमानंद बोगम। वाचक विजय चौधरी। प्रस्तुति सहायक श्री यशवंत देव। नियोजक और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर समर बहादुर सिंह।
1: मानस के मोती, ये रूपक अभी आप सुन रहे थे। संयोजन एवं प्रस्तुति समर बहादुर सिंह की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:01 हुए हैं। आइए सुने चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले सुनिए आवारापन फिल्म का ये गीत। मुस्तफा जाहिद की आवाज है, सईद कादरी की रचना है और संगीत प्रीतम का है।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों

0: को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए मर्डर 2 फिल्म का गीत। क्षितिज तारे की आवाज है, गीत और संगीत मिथुन का है।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: लवली निगम तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
2: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में NDA की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर NDA में विचार विमर्श जारी है। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।

0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु

0: परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अधिक संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। आइए सुने चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत प्रीतम का है और आवाज है जावेद अली की।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का तो फरमाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

बचना ए हसीनो। इस फिल्म का गीत सुनिए के और शिल्पा राव के स्वर में। अन्विता दत्त की रचना है और संगीत विशाल शेखर का है।

0: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। फोन करव छत्तीसगढ़ी गीत सुनव कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कल 14 मई को नहीं की जाएगी। विगत 11 मई को प्रसारित होने वाला कार्यक्रम विशेष प्रसारण रिले होने के कारण नहीं हो पाया था, जिसका प्रसारण अब 18 मई को अपने निर्धारित समय पर होगा। सूचना समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रम।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हो फिर पढ़ के भुला जाते हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए तुलसी कुमार की आवाज में वजह तुम हो फिल्म का गीत। राजेंद्र कृष्ण की रचना है, संगीत अभिजीत वघानी का है।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गीत। अरिजीत सिंह के स्वर हैं, अमिताभ भट्टाचार्य की रचना है और इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी इस सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। सांध्यकालीन सभा के स्थानीय प्रसारणों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुदुचेरी के राज्यपाल के कैलाश नाथन ने टी श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवीएम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री के 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद के उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। सीबीएसई के अनुसार 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20%

0: है छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% और छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। सोने या चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सरकार ने सोने या चांदी का आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। इस बीच विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे के तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The newly sworn-in government led by Chief Minister Joseph Vijaya has proven majority of 144 MLAs and has won the vote of confidence today. 22 AIA-DMK MLAs led by Edappadi Palaniswamy have opposed it. Five MLAs including BJP MLA and PMK remain neutral. DMK and other alliance partners did not participate in the motion and walked out of the assembly. The motion to prove majority was brought by Chief Minister in the assembly. The AIA-DMK, led by SP Velumani, supported the government. Veteran political leader and founder of the All India NR Congress, N. Rangaswamy, today took oath as the Chief Minister of Puducherry for a record fifth term. Along with him, A. Namasivayam of the BJP and Maladi Krishna Rao of All India NR Congress were also sworn in as ministers in the NDA government. The oath-taking ceremony for the newly elected MLAs of the 18th West Bengal Legislative Assembly is underway in Kolkata. Chief Minister Subhendu Adhikari took oath from Bhavanipur seat as MLA and the Nondigram seat has been left vacant. Afterwards, five other cabinet ministers also took the oath. Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced the size of his convoy during recent domestic visits while retaining all essential security arrangements mandated under the Special Protection Group SPG protocols. According to sources, the reduction in the number of vehicles in the Prime Minister's convoy was implemented during his recent visit to Gujarat and Assam. The move comes in line with the Prime Minister's seven appeals to citizens to contribute towards economic resilience by reducing dependence on imported fuel and adopting environmentally sustainable alternatives amidst West Asia crisis. Following Prime Minister Narendra Modi's appeal, Union Home Minister Amit Shah downsized his convoy, reducing it to less than half. The Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi have announced measures to reduce the use of official vehicles by ministers, MLAs and public representatives. Gold and silver prices today witness a sharp surge of up to 6%. In the futures market at the multi-commodity exchange, gold for the June contract was trading nearly 6% higher at 1,62,597 rupees per 10 grams, while silver for the July contract was trading around 6.4% higher at 2,96,821 rupees per kilogram, according to the latest reports. However, during intraday trade, gold and silver prices touched gains of up to 8%. The CBI team has arrived in Jaipur to probe the alleged leak of the NEET examination paper and questioned

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 3:11 हुए हैं। आपके साथ कार्यक्रम मनभावन लेकर मैं हूँ नईम अख्तर। जी हाँ, कार्यक्रम मनभावन, वो कार्यक्रम जिसमें आपके मन को भाने वाले गीत हम आप ही की फरमाइश पर आप ही तक वापस पहुँचाते हैं। मैं हूँ नईम अख्तर और आपके लिए हम वो नंबर ऑन एयर कर देते हैं जिस नंबर पर आप अपनी पसंद हम तक पहुँचाएंगे। जी, फ़ोन नंबर, आप फ़ोन नंबर नहीं, व्हाट्सएप नंबर आप हमारा लिख लीजिए 9868687539868687535। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपनी पसंद का गीत और हम तक पहुंचाइए और हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि कार्यक्रम शुरू होते ही हमारे पास ये जो पहला मैसेज आया है वो है सनावत से शेख मूसा मोहसिन का, उनकी पसंद का गीत फिल्म कांच और हीरा से ये रहा।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है कार्यक्रम मन भावन। आप सुन रहे हैं मन भावन में अपनी पसंद के गीत और आपकी पसंद के गीत हम तक पहुंच रहे हैं उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जो आप हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868686753 यानी 9868686753 और इस नंबर पर हमारे पास दो मैसेजेस और हैं जो अभी हम शामिल कर रहे हैं। मतलब मैसेजेस तो बहुत सारे हैं लेकिन जो दो मैसेजेस अभी हम शामिल कर रहे हैं उनमें से एक मैसेज है स्वरूप आनंद सरजाल का जोड़ा पीपल अंबिकापुर से और इन्होंने दादा फिल्म का एक गीत सुनना चाहा है। अभी सुनवाते हैं दोस्त आपके पसंद का गीत हम आपको। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने लिख के भेजा है मुबारक नाम हमारा है। नहीं अच्छी बात है कि आपका नाम मुबारक है, आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन ये भी तो बता देते मुबारक कि आप रहते कहाँ हैं। अपनी जगह का नाम भी लिख के भेजिए ना, ज़रा अच्छा सा लगेगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपने अगर नहीं लिख के भेजा कि कहाँ से आपने ये मैसेज भेजा है तो भी आपकी पसंद हम तक पहुँच गई है। आपने जो गीत सुनवाने की फरमाइश भेजी है नाम फिल्म का गीत, ये गीत हम सुनवाएंगे आपको दादा फिल्म के इस गीत के तुरंत बाद।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, और मन भावन में आपकी पसंद के गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके व्हाट्सएप पर भेजी हुई फरमाइश के माध्यम से। व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेजने के लिए हम आपको अपना फोन नंबर बता देते हैं। फोन नंबर है हमारा 9868868653, 9868868653। जी हाँ, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है आपको जो हमने बताया। और हमारे पास अगली दो फरमाइशें जो आई हैं उनमें से एक फरमाइश भेजी है शेरवानी स्कूलगंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। इन्होंने दोस्ती फिल्म का, 1964 की फिल्म दोस्ती का एक बहुत ही खूबसूरत और मधुर नगमा सुनना चाहा है, हम आप तक पहुँचा रहे हैं दोस्त। और दूसरा गीत जो सुनना चाहा है वो है उत्तम नगर होली चौक से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इन्होंने हिमालय की गोद में फिल्म का जो गीत सुनना चाहा है वो हम आपको सुनवाएंगे दोस्ती फिल्म के गीत के तुरंत बाद।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:33 कार्यक्रम मन भावन। मन भावन में आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर और हमारे साथ हैं आपकी पसंद के व्हाट्सएप के हुए कुछ फरमाइशी नगमे जिन्हें हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम आप तक भी एक चीज़ पहुंचा देते हैं, आपकी पसंद के गीत आप हम तक पहुंचा रहे हैं और आप तक हम उस नंबर को पहुंचा देते हैं, व्हाट्सएप नंबर को, जिस नंबर पर आप अपनी पसंद के गीत हमको लिखकर भेज सकते हैं। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868686753, यानी 9868686753। और आपकी पसंद जो हम तक पहुंची है उनमें से एक ही गीत को इत्तेफाक से हमारे दो श्रोताओं ने पसंद किया है। एक हमारे श्रोता हैं अंकित कांगड़ा, तन्वी बोट, निखिल कांगड़ा, बबीता बोट, सीताराम कांगड़ा, इन सभी ने एकता कॉलोनी रोहतक से हमारे पास एक पसंद भेजी है। और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है भगत सिंह जी की। इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ से भेज रहे हैं ये, लेकिन इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। तो चलिए, आप दोनों की ही पसंद की गीत को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। फिल्म पतंग से ये गीत है। और एक और श्रोता हमारे पास अपनी फरमाइश भेज चुके हैं, राजकुमार द्वारका मटियाला से। इन सभी ने इन्होंने हमें फिल्म मासूम फिल्म का भूपेंद्र की आवाज़ में, जिसमें सुरेश वाडकर ने भी उनका साथ निभाया है, एक गीत सुनने की फरमाइश भेजी है। तो चलिए पहले पतंग फिल्म का गीत सुनते हैं, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, और उसके फौरन बाद हुजूर इस कदर भी।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:49:49 कार्यक्रम मन भावन में हम आखिरी बार नंबर बोल रहे हैं उस व्हाट्सएप का जो जिस पर आप हमें भेजेंगे अपनी पसंद के गीत। जी हाँ, हमने आपको ये कहा है कि मन भावन कार्यक्रम में आप अपनी पसंद के गीत हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मतलब उनके बोल लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी पसंद आप तक पहुंचाएं। तो जनाब नंबर नोट कर लीजिए 9868687539868887535। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भेजिए, ये शायद आखिरी गीत होंगे

0: जो हम तक पहुंचेंगे उसके बाद कार्यक्रम का वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास जो दो गीत और आए हुए हैं वो हमें तीन हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजे हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, इन सभी ने जो और समस्त वायाल परिवार, अच्छा मतलब इसके बाद भी अभी कुछ और सदस्य बचे हुए होंगे तो इसके बाद इन्होंने लिखा है समस्त राजे जाधव और देशमुख और वायाल परिवार। चलिए आप सभी के पसंद का ये गीत जो आपने लिख के भेजा है अभी सुनवाते हैं। बस इतना जरूर कहेंगे कि जो गीत आपने लिख के भेजा है बहुत ही मन चला सा, बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही चुलबुला सा गीत है, अच्छा लगता है सुनने में, तो एक बार हम भी आपके साथ सुनेंगे और हम भी इसको एंजॉय करेंगे। और एक और गीत हमारे पास लिख कर के भेजा है हमारे दो श्रोताओं ने, लच्छनपुर जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू ने, और इसी गीत को संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोराया, जालंधर से भी सुनना चाहते हैं। फिल्म जो हमारे पास गीत है वो है सिलसिला फिल्म का गीत, पहली पहली बार देखा ऐसा जलवा। तो दोनों ही गीत बड़े चुलबुले से गीत हैं, छेड़छाड़ से भरे हुए, पर बहुत ही डिसेंट अंदाज में इन गीतों को हम तक पहुंचाया गया है। तो चलिए एक एक करके दोनों गीत सुनते हैं।
1: लूटा है मना लेंगे, वो तो बिगला है बना लेंगे, वो तो लोटा है हंसा लेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे

बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर सुनते हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता की पसंद का ये गीत कार्यक्रम मन भावन में।

गाना पसंद का मुश्किल से सुनते हैं, सुन लिया सुन लिया सुन लिया। और बाकी हमारे वो सभी श्रोता जो अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते थे पर नहीं सुन पाए, उनके लिए भी यही गीत है कि मुश्किल से सुनते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो कोई बात नहीं, आप हमारे दूसरे श्रोताओं के पसंद के गीत सुनते रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM गोल्ड। आपके साथ मैं थी कार्यक्रम मनभावन में नईम अख्तर। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, 10 मिनट बाद हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार सुनने के तुरंत बाद आपसे फिर मिलूँगी कुछ और गीत और कुछ और कार्यक्रम लेकर। सुनते रहिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके बाद 557 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कपास के लिए और 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि तिल के लिए की गई है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। एडापड़ी के पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और पीएमके समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। डीएमके और अन्य गठबंधन सहयोगी दलों ने प्रस्ताव में भाग नहीं लिया और विधानसभा से वॉकआउट किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नसिमयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हाल की यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा कारोबार में जून अनुबंध के तहत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग शी ट्योंग को हराया, जबकि मालविका ने कनाडा की वेन यू झांग और देविका ने जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। पुरुष सिंगल्स में के श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आयुष शेट्टी, थारुन मन्नपल्ली, उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और अनमोल खरब को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

4:10, 55 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी एफएम गोल्ड। आप और हम अभी जुड़े हुए हैं कुछ फिल्मी गीत सुनने के लिए। मैं हूं आपके साथ नईम अख्तर और आपके लिए है ये पहला नगमा इस घंटे का।

नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करेक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूं और ड्रा भी कर रहा हूं और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत चंपत, शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करेक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी, सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले, स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था, जैसे कि

0: 9 बजे जी आएगा, 6 बजे जी आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइशी प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था, और इसके अलावा बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम। विविध भारती का अपना एक अलग मजा था, क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र साधन था। तो एक ट्रांजिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था, जो मैं रात को हवा महल जिस पे सुना करता था। समय बीता, मुझे याद है ये 1977 की बात है, मैं 12 या 13 साल का था। तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की, और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था, और मोहम्मद रफी साहब का वो गीत, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये सुना करता था। इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं, और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उल जुलूल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूँगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।
1: फिल्म म्यूजिक से अभी नईम अख्तर को दीजिए इजाजत और सुनिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज कार्यक्रम।
2: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with National Institute of Labour Economics Research and Development has invited applications for the post of Joint Director, Deputy Director and Assistant Director on contract and deputation basis at its Narela campus in Delhi. The appointments will be initially for 3 years and may be extended further based on performance and institutional requirements. Candidates with qualifications in economics, development studies, statistics, engineering, business management, public policy, and other social science disciplines may apply. Interested candidates can check detailed eligibility criteria and application procedures on the official website, that is at www.nilerd.ac.in. The last date for submission of applications is 45 days from the date of publication in the Employment News. National Informatics Center, NIC, under the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, has invited online applications for direct recruitment to posts of Scientist C and Scientist D. There are total number of 153 vacancies which have been announced, including 141 posts for Scientist C in Pale Level 11 and 12 posts for Scientist D in Pale Level 12. Candidates with qualifications such as BE, BTech, ME, MTech, MSc, MCA, MPhil and related degrees in computer science, electronics, IT, mathematics, GIS, cyber law and allied fields are eligible to apply. Relevant experience of 4 years for Scientist C and 8 years for Scientist D is required in research, development, academic institutions or science and technology organizations. For details, kindly refer to the website at www.recruitment.nic.in. Office of Central Registrar of Corporative Societies under the Ministry of Corporation has invited applications to fill various technical posts on deputation and short-term contract basis. The vacancies include Additional Registrar, Joint Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar and Senior Cooperative Officers posts. Interested candidates can check detailed eligibility conditions

0: and application procedures on the official website. That is at www.cooperation.gov.in, or you could go on to www.crcs.gov.in. The last date for receipt of applications is 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. The Department of Health Research, DHR, under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has invited applications from eligible officers for a scientist post on deputation, including short-term contract basis, in its Health Technology Assessment Attached Office. Interested candidates can apply within 30 days from the publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.dhr.gov.in. The Office of the Registrar General and Census Commissioner, India, under the Ministry of Home Affairs, is inviting applications for 6 posts of senior translator on deputation or absorption basis in New Delhi and other data collection officers, DCOs. The posts are in level 7 as per the 7 CPC. Eligible candidates must apply through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website, and the official website is www.censusindia.gov.in.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में निदेशक इंजीनियरिंग का एक पद रिक्त है, जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि संबंधी विवरण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.shipmin.gov.in पर करियर लिंक के अंतर्गत मंत्रालय में रिक्ति लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक एवं पात्र अधिकारी अपना आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं। अवर सचिव प्रशासन, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 447, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। अंडमान लोक निर्माण विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए अधीक्षण अभियंता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। केवल एक पद पर रिक्ति उपलब्ध है और पद 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। आवेदन पत्र मुख्य अभियंता कार्यालय, APWD, निर्माण विभाग, श्री विजयपुरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा APWD की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका पता है andamannicobar.gov.in तथा apwd.and.nic.in। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। समूह महाप्रबंधक उत्पादन, समूह महाप्रबंधक परियोजना, महाप्रबंधक गुणवत्ता, महाप्रबंधक अनुसंधान एवं विकास तथा महाप्रबंधक मानव संसाधन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.midhani-india.in। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। लोक अभियोजक एक पद नई दिल्ली के लिए, आशुलिपिक श्रेणी 1 और निजी सहायक कुल 4 पद, जिनमें से एक पद भोपाल तथा एक पद कोलकाता के लिए रहेगा, जबकि 2 पद नई दिल्ली के लिए रहेंगे। उच्च श्रेणी लिपिक 1 पद भोपाल मध्य प्रदेश के

0: लिए आशुलिपिक श्रेणी तीन दो पद, जिनमें से एक पद नई दिल्ली के लिए और एक पद मुंबई के लिए है। उपारक्षी वनरक्षक एक पद चेन्नई और चेन्नई क्षेत्र, ड्राइवर एक पद कोलकाता तथा एक पद चेन्नई के लिए। संपूर्ण विज्ञप्ति और विवरण मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका पता है moef.gov.in। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आवेदक श्री संजीव कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक प्रशासन वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ब्यूरो मुख्यालय से ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ईमेल का पता है adadm@wccb.gov.in। फोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर हैं 011-208-6239 तथा मोबाइल नंबर है 9415911667। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। तो श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुजतबा। हेलो सायरा।
2: Hello Jaya, how are you?
1: I'm fine.
2: And hope all listeners are also doing fine. Or welcome to our listeners. Adab, namaskar, a very good evening because we have come with another fresh episode of Parikrama, where of course we have named the show because we do Parikrama of the country. Dekhenge hum log ke jo correspondents hai in different parts of the country, what interesting stories they have to share with us. And of course, Jaya has already told you what to look forward to among other things. So let's start with the headlines first, Jaya.
1: जी, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद के शपथ ली।
2: Center and states intensify fuel saving measures following Prime Minister Modi's appeal amid global energy crisis triggered by the West Asia conflict.
1: CBSE ने कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित किए।
2: Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%.
1: मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून जल्द ही आने की संभावना।
2: And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. जया, हस्बी दस्तूर हम लोग शुरुआत करते हैं परिक्रमा की अपने स्पेशल सेगमेंट डेटलाइन इंडिया से, इन विच वी टेक अ लुक एट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। वेल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द कमेंसमेंट ऑफ द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण और VBG रामजी एक्ट 2025 अक्रॉस ऑल रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st of July दिस ईयर। With coming into force of the VBG Ramji Act, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act or MGNREGA stands repealed from the same date. This marks a historic transition in India's rural development framework and ushers in a new era of integrated, future-ready and productivity-oriented rural transformation aligned with the national vision of Viksit Bharat at 2047. The commencement of the Act marks a historic transition from the earlier framework of Mahatma Gandhi, NREGA, towards a modern rural development architecture that combines livelihood security, durable asset creation, technology-enabled governance, convergence-driven planning, and climate resilience.
1: बिल्कुल सायरा, और ये अधिनियम हर वित्तीय वर्ष में हर उस ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वेतन रोजगार के खानों

0: अपनी गारंटी देता है जिसके वयस्क सदस्य बिना किसी खास हुनर वाले शारीरिक काम को करने के लिए अपनी मर्जी से आगे आते हैं। इस बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण परिवारों की आमदनी, आजीविका की सुरक्षा, गांव के स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और टिकाऊ ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इसका मकसद एक ऐसा टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ग्रामीण आजीविका, स्थानीय आर्थिक और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को मजबूत करे। समय के साथ बढ़े हुए सामाजिक सुरक्षा कवच, बेहतर भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, ज्यादा वित्तीय समावेशन और आजीविका के साधनों में विविधता के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आया है और इन बदलावों को देखते हुए ही मौजूदा ग्रामीण रोजगार ढांचे की आज की जरूरतों और उम्मीदों के साथ साथ विकसित भारत एट 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ढालने के लिए उसमें जरूरी सुधार करने की जरूरत है।
1: That's right, Jaya. And in furtherance of this objective, it is proposed to strengthen the livelihood guarantee framework by enhancing the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. The enhanced guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households through expanded employment opportunities. Accordingly, it has been enacted a new legislation titled the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen or VBG Ramji Act to establish a future-ready rural development framework that integrates livelihood security with productivity and asset creation. Livelihood guarantee and workers security as well.
0: बिल्कुल। और अगर हम इस अधिनियम की विशेषता की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें विशेष बात यह है कि इसके तहत सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और इस बढ़ी हुई गारंटी का उद्देश्य यही है कि आजीविका सुरक्षा को मजबूत किया जाए, आय में स्थिरता लाया जाए, ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा दिया जाए और कमजोर परिवारों को अधिक आर्थिक मजबूती प्रदान की जाए। इस रूपरेखा को रोजगार भी सम्मान भी यानी कि सम्मान के साथ रोजगार के सिद्धांत पर तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य केवल मजदूरी वाला रोजगार देना ही नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण श्रमिक ऐसे टिकाऊ और उत्पादक सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले जो गाँव के दीर्घकालिक विकास में योगदान देती हो।
1: And Jaya, if I may ask you a question, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मजदूर या किसान के बारे में आप सोचिए तो naturally किसका ख्याल आता है, किसी मेल का?
0: Obviously.
1: But अगर आप थोड़ा सा गहराई से सोचें विद अगर इंस्टेंटली ना रिस्पॉन्ड करें तो आप देखेंगी या ऑब्जर्व करेंगी दैट कितनी सारे किसान और मजदूर एक्चुअली महिलाएं होती हैं
0: जी.
1: बाहर भी इफ यू सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन फॉर एग्जांपल एंड इफ यू जस्ट पॉज योर कार और व्हीकल एंड जस्ट ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्शन साइट यू वुड सी दैट समटाइम्स ऑलमोस्ट हाफ एंड समटाइम्स इवन मोर वर्कफोर्स कंप्राइजेस ऑफ फीमेल वर्कर्स सो इन ऑर्डर To promote the participation of women workers, a key provision has been incorporated in the Act. At work sites where 5 or more children below the age of 5 are present, one woman worker will be appointed to take care of the children and will be paid at the prescribed wage rate. So this is very important because obviously at construction sites, for example, you cannot have creches, right? But okay. It's a very novel idea that among those female workers, one woman would be taking care of the children and she would be counted as, she would be given the daily wage according to that, right? So this is a very, very good initiative, I would say, which would enhance women participation. In the workforce, isn't it?
0: बिल्कुल बिल्कुल सायरा। और हमने कई बार देखा भी है कि किस तरह से महिलाएं अपने कंधों पे, पीठ पे बच्चों को लेकर काम कर रही होती
1: yes.
0: हैं, ईंटें ढो रही होती है। तो ये चीजें देख करके ही सरकार ने फिर इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना की स्थिति में मुफ्त चिकित्सा उपचार का अधिकार भी प्रदान किया जाए और यदि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है तो उनके रहने, उपचार, दवाओं और मजदूरी दर के आधे के बराबर दैनिक भत्ते की व्यवस्था भी की जाएगी। मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुग्रह सहायता देय होगी और इस प्रकार ये अधिनियम कार्यस्थल पर सुरक्षा, संवेदनशीलता और सामाजिक सुरक्षा का एक व्यापक ढांचा सुनिश्चित करता है।
1: सो दिस ट्रांजिशन फ्रॉम महात्मा गांधी नरेगा टू द न्यू फ्रेमवर्क हैज आल्सो बीन डिजाइंड इन अ सीमलेस एंड वर्कर फ्रेंडली मैनर।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत। गीत लिखा महबूब ने और संगीत से सजाया इस्माइल दरबार ने।
1: और पसंद थी हमारे इन श्रोता साथियों की बेमे तरह से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वानी वर्मा शिक्षक नगर दुर्ग से, सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया, रिंकू सन्नी, कोमल यादव की, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू की।
0: दोस्तों, वक्त की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें हम मुट्ठी में कैद कर लेना चाहते हैं। ये लम्हे इतने हसीन होते हैं कि वो हमारी यादों की डायरी में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। तो चलिए उन्हें प्यार भरे लम्हों की ओर फिर से चलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म लगी रहो मुन्ना भाई का गीत, जिसके बोल लिखे थे स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया था शांतनु मोइत्रा ने।
1: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, सिर्री गातापार से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा बिंदेश्वरी नागेश्वरी चमेली भूमिका मोनिका पूनम साहू की, मगरलोट से पुनूराम साहू तेजेश्वरी राजश्री राजवीर साहू की, खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल पुष्पलता झरना प्रेरणा दीक्षा शिक्षा की, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी कमलकांत बीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी की, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रोहाना बेगम और मोहम्मद साजिद की।
0: निगाहों के भी अपने अल्फाज होते हैं, बस कोई उसे पढ़ने वाला चाहिए। दोस्तों जब हम प्यार की बात करते हैं तो अक्सर निगाहों का जिक्र सबसे पहले आता है। कहते हैं कि आंखें वो सब कह देती हैं जो जुबां पर नहीं आ पाता। तो चलिए अपनी यादों की खिड़की खोलिए और डूब जाइए इस सुरीले एहसास में जो सिर्फ गाना नहीं बल्कि महके हुए राज और खुलते हुए अंदाज की एक जादुई दास्तां है।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म का ये गीत। गीत लिखा गुलजार ने और संगीत से सजाया आरडी बर्मन ने।
1: और फरमाइश थी हमारे इन श्रोता साथियों की अरमरी खुर्द दुर्ग से चूरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे की, सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता जैन, प्रदीप मोनिका, बीना देवेंद्र, आदिश जैन की, करीबतर बालोद से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदा निर्मलकर, लोचन कुमार विद्यार्थी गीतिका की।
0: दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे मुड़कर देखना हमें कमजोर बना देता है। मंजिल सामने हो और हौसले बुलंद तो बस आगे बढ़ने का ही एकमात्र रास्ता होता है। ऐसे ही कश्मकश और रफ्तार की कहानी कहता है हमारा ये गीत, जिसमें एक तरफ माया नगरी की चमक धमक है तो दूसरी तरफ अपने उसूलों को पीछे छोड़ने का वो डर। तो चलिए पुराने दिनों की उन गलियों में एक बार फिर से हम सैर कराते हैं।

0: पर है हाय
1: मुड़ मुड़ के।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मन्ना डे के स्वर में फिल्म श्री 420 का गीत, जिसके बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने, और फरमाइश थी हमारे इन श्रोता साथियों की दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा रीना लक्ष्मीना यदु की, सिर्री गातापार से लावण्या साहू, उपासना देवराज, ओम कुमार पुष्पराज, प्रभुराम साहू की।
1: साथियों, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बता दें कल के कार्यक्रम। कल की युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे पहुना जोहार और हमर गांव। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त अपेक्षा शुक्ला
0: और रोशनी पांडे को इजाजत
1: और स्वीकारें हमारा
0: नमस्कार।

युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए

0: महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं, इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी रायपुर है। 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री है अपन काफिला मा करिन कटौती। केंद्रीय मंत्रिमंडल है 14 खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत मा बढ़वार ला दे है मंजूरी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है आज कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा के नतीजा करिस घोषित। अब समाचार विस्तार ले। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकार मन है ईंधन बचत उपाय तेज कर दे है। वैश्विक ईंधन कीमत में बढ़वार के सेती प्रधानमंत्री है हाले में घरेलू दौरा पर अपन काफिला के आकार छोटा कर दे है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के जरूरी सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रही। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घलो अपन काफिला के आकार घटा के आधा ले कमती कर दे हैं। एति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका हा अपन आधिकारिक काफिला मा चलैया गाड़ी के संख्या कमती करीन है। श्री डेका हा आम लोगन ले मितव्ययता बरते के आह्वान करीन है। राज्यपाल हा कहिन की सामूहिक जिम्मेवारी और संसाधन के संतुलित उपयोग ले ही हमर देश भविष्य के चुनौती के प्रभावी ढंग ले सामना कर सकी। इही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो प्रदेशवासी मन ले ईंधन और संसाधन के कमती उपयोग करे के अपील करीन है। उमन कहिन की सबो सरकारी गाड़ी ला चरणबद्ध तरीका ले इलेक्ट्रिक गाड़ी मा बदले के काम शुरू करे जाही। मुख्यमंत्री है बतैन की उमन अपन काफिला मा गाड़ी के संख्या मा कटौती करे के फैसला ले ही। केंद्रीय मंत्रिमंडल है विपणन सीजन 2026-27 बर 14 खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत में बढ़वार ला मंजूरी दे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठका के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है कहिन की सरकार है किसान मन ला उखर उत्पाद के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करे बर खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दे हैं। उमन कहिन की खरीफ सीजन पर किसान मन ला अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपया के भुगतान करे जाही। उमन यहू कहिन की ये सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन ज्यादा के फसल बिसाए जाही। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है आज कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा के नतीजा घोषित कर दे है। SO CBSE के कक्षा 12 के विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषय परीक्षा 17 फरवरी ले 10 अप्रैल तक राखे गई रही। CBSE है बताया है कि 17,68,000 ले ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में संग्रीन, जेमा 15,07,000 ले ज्यादा विद्यार्थी पास हुए हैं। एसओ के कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्र अपन परिणाम CBSE के आधिकारिक वेबसाइट और उमंग ऐप में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय CBSE 12वीं बोर्ड के परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थी मन ला बधाई और शुभकामना दिन है। केंद्र सरकार है सोना और आने कीमती धातु में आयात शुल्क बढ़ा दे है जोन आज ले प्रभावी हो गए है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय है कहे है कि सोना और चांदी में 5% और प्लेटिना में 5.4% आयात शुल्क लगी। एक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पश्चिम एशिया में चलत संकट ला देखा लोगन ले सोना बिसाले बांचे के अपील करे रहीन। रायपुर के प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के बैठका रखेगी। बैठका में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत कतकुन बड़का अधिकारी मौजूद रहीन। बैठका में नक्सल उन्मूलन में प्रस्ताव पारित करेगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कोती ले आवास और पर्यावरण विभाग के सहायक संचालक योजना के 21 पद में भर्ती पर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री OP चौधरी यकीन कि ये भर्ती सिर्फ खाली पद के पूर्ति नो है भलुक छत्तीसगढ़ के सुव्यवस्थित वैज्ञानिक और दूरदर्शी शहरी विकास के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। बालोद जिला में मिट्टी धसे ले 3 मजदूर के दब के मौत हो गए, जिमा एक महिला घरों शामिल है। ये हादसा काली संझा दल्ली राजहरा नगर में वो बेरा हुई जब मजदूर BS

मिट्टी के सीवरेज पाइप बिछाए बर खुदाई करत रहीन हे। इही दौरान औचक माटी के धसे ले उहां काम करत मजदूर मलबा म दब के उखर मौत हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगन मन आरोप लगाए हैं कि काम के दौरान सुरक्षा के बने व्यवस्था नहीं करेगे रहीस। प्रशासन ने मामला के जांच शुरू कर दे है और दोषी मन के खिलाफ उचित कार्रवाई करे के भरोसा देवाइन है। दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक परिवार के चार जन के मौत के मामला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मृतक के परिजन मल्ला 5-5 लाख रुपया के सहायता राशि दे के घोषणा करी है। ये रकम शासन के नियम के तहत मिलैया 4-4 लाख रुपया के सहायता रकम ले अलग हो ही। घटना की जानकारी मिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौका में पहुंच के वहां के स्थिति ला देखीन। लोक शिक्षण संचालनालय है महासमुंद जिला के भंवरपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष समेत 5 जिन कर्मचारी मल्ला निलंबित कर दे हैं। ये सब ऊपर परीक्षा संचालन में कोताही बरते के आरोप है। खबर के मुताबिक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के दौरान सुरक्षा और जाँच नियम के उल्लंघन पाएगी, जेकर से एक छात्र डिजिटल कैमरा लेके परीक्षा कक्ष के भीतरी प्रवेश करे में सफल रहीस। छात्र परीक्षा कक्ष के भीतरी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में प्रसारित कर दीस। निलंबन के बिरा ये सबों के मुख्यालय महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रही। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर पद के प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई के होए के घोषणा करे है। ये परीक्षा इतवार के बिहनिया 10 बजे ले मंझनिया 12 बजे तक राज्य के सबो 33 जिला में होही। ये पद पर 1,37,000 ले ज्यादा अर्जी मिले रहीस। दस्तावेज और शारीरिक माप परीक्षण के बाद 63,342 उम्मीदवार परीक्षा पर पात्र पाए गए हैं। प्रवेश पत्र परीक्षा ले 15 दिन पहली आयोग के वेबसाइट में जारी करे जाही। बीजापुर जिला में सुरक्षा बल मन माओवादी मन कोती ले लुका के राखे करीबन 65,65 लाख रुपया नकदी समेत बड़ मात्रा में हथियार गोला बारूद विस्फोटक जिनिस बरामद करे हैं। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव बताएं कि अभी तक जिला में 7 करोड़ रुपया ले ज्यादा के नगद रकम के संगे संग 8 किलो 200 ग्राम सोना घलो बरामद करे जा चुके है। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेले जाही। ये मैच संध्या 7:30 बजे ले शुरू हो ही। एकर पहली 10 मई के नवा रायपुर में खेले गए एक आने मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियन ला हराए रहीस। आकाशवाणी रायपुर कोतिले आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में विशेष कार्यक्रम प्रसारित करे जाही। प्रादेशिक समाचार एकांश कोतिले तैयार ये कार्यक्रम के प्रसारण आज रतिया 8:15 ले हो ही। इला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र रिले कर ही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर नामांकन के काम चला थे। ये पुरस्कार खातिर 5 से 18 बच्चर आयु वर्ग के लड़का 31 जुलाई तक अर्जी दे सकते हैं। महिला और बाल विकास विभाग ले मिले जानकारी के मुताबिक अर्जी सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ले ऑनलाइन मंजूर करे जाही। राज्य शासन ने प्रदेश के प्रतिभाशाली लड़का मन ले ज्यादा संख्या में अर्जी करे के अपील करी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर बच्चर राष्ट्रपति कोती ले वो लड़का मन दे जाते जौन मन आने आने क्षेत्र में बने प्रदर्शन करके देश के गौरव बढ़ाए हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार बताएं कि NCERT और CBSE मिलके 3 से 8 कक्षा तक के विद्यार्थी मन पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आधारित एक ठी नवा पाठ्यक्रम शुरू करे है। उमन बताएं कि शिक्षक मल्ला गर्मी की छुट्टी के दौरान प्रशिक्षण दे जाही और छुट्टी सिराए के बाद स्कूल खुले में ये विषय के पढ़ाई शुरू हो जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री है अपन काफिला में करीन कटौती। केंद्रीय मंत्रिमंडल 14 खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत में बढ़वार ला दे है मंजूरी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजा करी घोषित। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

0: हि बीजानां कृते अनुशंसितं। तदनन्तरं 57,500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल कर्पासस्य कृते, 500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल तिलस्य कृते च अनुशंसितमस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: प्रिया श्रोतार संस्कृत वार्ताया संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37,50,000,000,000 रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्री वैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं 3,00,000,000,000 रूप्यकाणां अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकझगम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। चतुश्चत्वारिंशोत्तरैकशत विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रांतरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षिदलं DMK विधानसभा सदनात् बहिरगच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलम् 88 शतासनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं बारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मंत्रीरूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये महाराष्ट्रे पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश झारखंड पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टिः तीव्रवायुवेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांकपर्यन्तं लक्षोपलक्ष छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिमेशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकटकालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्रराज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 14 खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण सहज

0: बहुमतेन सक्षिपरीक्षणं विजितम् इति वार्ता।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं ललिता शर्मा, अशोक श्रीवास्तव और साथी। पहले सुनिए ये संदेश।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं ललिता शर्मा, अशोक श्रीवास्तव और साथी। ललिता शर्मा की आवाज़ में पहले सुनिए नारायण लाल परमार का लिखा ये गीत।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। फोन कराओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कल 14 मई को नहीं की जाएगी। विगत 11 मई को प्रसारित होने वाला कार्यक्रम विशेष प्रसारण रिले करने के कारण नहीं हो पाया था, जिसका प्रसारण अब 18 मई को अपने निर्धारित समय पर होगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं हरि ठाकुर की लिखी ये रचना, आवाज़ अशोक श्रीवास्तव और साथी की है।

0: इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज कलाकार थे ललिता शर्मा, अशोक श्रीवास्तव और साथ ही मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले

0: घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत से संबंधित अपील के बाद प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों ने अपने काफिले के वाहनों की संख्या में कटौती की। सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि वीबी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए करीब 65.5 लाख रुपए नकद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने भी अपने आधिकारिक काफिले में चलने वाले वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री डेका ने आमजन से भी मितव्ययता बरतने का आह्वान किया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन संरक्षण और संसाधनों का संयमित उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की दिशा में कार्यवाही शुरू की जाएगी।
7: प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें, सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें, तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने कारकेट में कटौती की है, तो आने वाले समय में हम लोग ईवी पर विशेष जोर देंगे।
6: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि सीजन

0: 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्र अपने परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट और उमंग ऐप पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि वीबी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित सेमिनार और समीक्षा बैठक में बताया कि ये व्यवस्था 1 जुलाई से देशभर में लागू की जाएगी। श्री पासवान ने कहा कि इससे ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा और पंचायत कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, समय पर भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण को मजबूती मिलेगी, जिससे में विकास कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाव ठाकरे परिसर में आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा गया कि जनता ने विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। पार्टी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने मोदी गारंटी के कई प्रमुख वादे पूरे किए हैं। बैठक में नक्सल उन्मूलन पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की गई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर पदों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई को आयोजित करने की घोषणा की है। ये परीक्षा रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य के सभी 33 जिलों में होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 15 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इधर वन विभाग में वन रक्षक के 1484 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेज दी गई है। लिखित परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवास और पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक योजना के 21 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। ये हादसा कल शाम दल्ली राजहरा नगर में उस समय हुआ जब मजदूर BSP की सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी के धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखा गया करीब 65.5 लाख रुपए नगद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अब तक जिले में 7 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि के साथ ही 8 किलो 200 ग्राम सोना बरामद किया जा चुका है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और उससे जुड़े आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई करते हुए रायगढ़ पुलिस ने एक संगठित सट्टा सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद की है। साथ ही नोट गिनने की मशीन, मोबाइल

0: फोन और अन्य सामग्री सहित 1,03,00,000 रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई है। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्र रिले करेंगे। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने सीएसएमसीएल में हुए ओवरटाइम भुगतान मामले में सीडीएल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एन उदय राव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही 7 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जा चुके हैं। उदय राव पर फील्ड संचालन में बिलिंग समन्वय और भुगतान की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच ओवरटाइम बोनस, 4 अतिरिक्त दिवस भुगतान और सर्विस चार्ज के रूप में मैन पावर एजेंसियों को लगभग 183 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं आज शाम राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में बारिश होने के समाचार मिले हैं, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2.3% दर्ज की गई है। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर 3 से 8 कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इच्छुक उम्मीदवार 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज बिलासपुर स्थित जिला और सत्र न्यायालय में सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय ने महासमुंद जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष सहित 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर परीक्षा संचालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। महासमुंद जिले में महतारी वंदन योजना के तहत ईकेवाईसी के एवज में हितग्राहियों से राशि मांगने के आरोप में 4 सीएससी संचालकों की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। बीजापुर जिले में डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से नागरिकों को आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा कल 14 मई को कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत से संबंधित अपील के बाद प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों ने अपने काफिले के वाहनों की संख्या में कटौती की। सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि वीबी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए करीब 65,50,000 रुपए नगद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। आवाज़ें आशा भोसले और कुमार सानू की हैं। गीत लिखा है अनवर सागर ने और संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने।

सोनू निगम और श्रद्धा पंडित के युगल स्वर में आइए सुनते हैं फिल्म संघर्ष का गीत। गीत रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। फोन कराओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कल 14 मई को नहीं की जाएगी। विगत 11 मई को

प्रसारित होने वाला कार्यक्रम विशेष प्रसारण रिले करने के कारण नहीं हो पाया था, जिसका प्रसारण अब 18 मई को अपने निर्धारित समय पर होगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। लीजिए अब सुनिए फिल्म बरसात का गीत। आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की हैं। गीत रचना समीर की, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

कुमार सानू और अलका याज्ञिक को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बरसात में। गीत रचना समीर की थी, संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने। इस गीत के बाद आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कहो ना प्यार है का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने। गीत लिखा है सावन कुमार ने, संगीत राजेश रोशन का है।

इसी के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम नीतू दीदी।
1: राम राम दीपा, वो कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम।
1: भाई दीपा।
0: हाँ दीदी।
1: जब अंतस के गोट जब कागज में उतरते ना, तब सिर्फ वह चिट्ठी नहीं भलुक अंतस के सुख घर भावना के एक दुनिया बन जाते।
0: सिरतोन कहे दीदी, और चिट्ठी हमार एक दूसर तक पहुँचाते माया उछाह अपनापन और अंतस के पोठ गोठला।
1: तब भाई पोट गोट ये है कि अभी हमन शुरू करथन चिट्ठी मिली दीपा, अंतस के तार ला जोड़थन ए पार ले वो पार और सुनथन सुनाथन हमर अंतस मा लुकाए मीठ मीठ सुरता मया और अपना पन ला माने शुरू करथन चिट्ठी मिली।
0: हाँ दीदी, ता ये क्रम बर हमर तीर पहला मेल आ है और ये मेल के माध्यम ले अपन संगी मन विचार करे है और सांजर मिंजर के किमले अपन पोट जो संग गोठ है तेला हमर तीर पहुंचा है। संगवारी मन है बेमे तरह ले सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, कमलकांत वीरेंद्र और बीजकांत सारथी मन हा। ये मन के कहना है कि जेठ के गरम संझा माँ जुड़ जुड़ हवा कस ऐसा संझा बुधवार के हमर मायारू चौपाल जेमा कंपियर राजेश और रुकमणी बहुत ही सुघर ढंग ले बताइन कचरा ला झन जलावन ओखर प्रबंधन करके पर्यावरण ला बचावन और गोठ बर पोटरी से संगे संग कार्यक्रम आज की सलाह मा जैविक उर्वरक से ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती को बढ़ावा ये विषय में जानकारी विशेषज्ञ डॉक्टर दीपिका देवदास सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन
1: रानी अवंतीबाई
0: कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र छुई खदान ले दिन है और जेन हमला बड़ उपयोगी और लाभ के लागी से और गीत संगीत तको हमला बड़ मीठ लागी से कुल मिला के ये दिन के जो कार्यक्रम हमला अंतसले उछाले भर दी से और ये सुघर कार्यक्रम बर चौपाल प्रभागला और विशेषज्ञला हमारे संगी मनहा बधाई पठोए।
1: भाई दीपा, अतका सुघर सांझन मिझर अपन जेन विचार होला जब इतना विस्तार से फरिया के हमारे संगवारी मन लिखे है ना, तो हम जान जथन की संगवारी मन कतका ध्यान ले हमार कार्यक्रम ला सुनते।
0: हाँ।
1: और भाई हमार तो ये प्रयास रही थे कि हमार संगवारी मल्ला कार्यक्रम जो देवन ओहर लाभ के रहे ओहर उपयोगी के रहे, वैसने ओ दिन जन कार्यक्रम रही से जैव उर्वरकों से ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती को बढ़ावा देना। सिर तो ने भाई कि जैव उर्वरक के उपयोग अगर हम करबो तो हमार माटी के जन गुणवत्ता है वह बाढ़बे करी और जिन माटी के कहना चाहिए जो उत्पादकता है वह बाढ़ी और जिन हमार खेती के आधार है ना हवा पानी वो हद तक हो बाँची। तो भाई संगवारी हो आप मन पाती पठो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जेन कहना चाहिए धन्यवाद है ओला हमन हा हिचे ले दीपिका देवदास तक पहुंचावत हन और आपके जेन बधाई हमला देहो ओला हिचे ले झोका थन।
0: दीदी पहला पाती आय रही तीन 6 मई बर आय रही से और दीदी दूसरा पाती आ है 7 मई बर। एमा संगवारी मन हा कहा थे कि ये दिन के कार्यक्रम में रिकिम रिकिम की सूचना मनोरंजन और जानकारी ले भरे रही से जेमा समित और मोनिका हमार खान पान गर्मी के मौसम मा कैसे रहना चाहिए ओला बड़ सुघर ढंग ले फरिया के बताइन है। ऐसने है डॉक्टर परमेश्वर साहू जी मन अवैया खरीफ फसल बर औषधि गुण ले भरपूर कई ठन धान के किस्म और उखर गुण धर्म के बारे में बड़ उपयोगी और लाभकारी जानकारी दिन है जेन ला सुन के हमन अवैया खरीफ इखर बताए कि समला उगाए बर विचार करत हन और कृषक प्रश्न मंच गीत संगीत जम्मो हमर बर हमन ला मन मोहली से और अतिक सुघर सूचना मनोरंजन और जानकारी ले भरे कार्यक्रम हमर तक पहुँचा है एकर बर चौपाल प्रभाग ला गाड़ा गाड़ा बधाई दे और हमर ये संगी मन है मगर लोड ले है केजूराम मालेकर ठाकुर राम अश्वनी मालिकर मन।
1: भाई संगवारी हो ऐसे है कि ये दिन के कार्यक्रम में जब आप मन सुने वाला फसल जन खरीफ फसल अवैया है औषधि गुण तको होते कई ठन धान मा तो भाई आप मन हा सुन के ये जन विचारत हो ना कि यही जन किस्म बताई से हमारे डॉक्टर परमेश्वर साहू जी मन उमन हा ए बार के फसल आप मन लेहू तो ये तो ऐसे सुन के ऐसे लागिस दीपा कि हमारे जन ओ दिन के जन प्रयास रही से
0: वो सफल हो गए
1: है नहीं। और संगवारी हो आपके दिन के जैसे कि कहा था कि सूचना मनोरंजन जानकारी ले भरे रही से तो भाई तो हमार उद्देश्य हरे हमार आकाशवाणी के कि हमार जिन कार्यक्रम है वो सूचना मनोरंजन और जानकारी ले भरे रहे संगवारी। तो ये दिन के कार्यक्रम ला आप मन मन करे और खरबार बहुत बहुत धन्यवाद और आप मन जिन बधाई पठोए हो उला ईचे ले हम डॉक्टर परमेश्वर साहू तक पहुँचावा थन।
0: दीदी अगला पाती आ है 8 मई खातिर और ये हमारे संगवारी मन भेजे है गर्रापार बांधा बाजार ले मानवेन साहू गंगाराम सुलोचना राकेश साहू मन हा और ये मन लिखे है कि आज के चौपाल ला सुन के हमार मन गदगद हो गए काबर के ये दिन के कार्यक्रम के जम्मो क्रम हमार बर उपयोगी और लाभ के रही से ये दिन सबले पहली पूजा और लव कुमार जल संरक्षण खातिर जो हमारा परंपरागत स्रोत के साफ सफाई खातिर बड़ फरिया के सुघर गोट करीन है और तहाले हमार सबले मायारू क्रम है हेलो चौपाल माँ हमार औषधीय और सुगंधित पौधा के खेती के विषय में समस्या और जिज्ञासा के समाधान करीन है डॉक्टर एलिस तिर्की जैन ये बार जो जानकारी दी से तेन हाँ बड़ लाभ के लगी से और सुघर गीत संगीत संग हमार संझा बड़ सरल गहा के है ना और सुघर प्रस्तुति बर चौपाल प्रभाकला गाड़ा गाड़ा बधाई दे हमारे संगवारी मन हाँ
1: ऐसे है दीपा कि जैसे मन कहा थे ना कि सुघर गीत संगीत संग हमार संझा बड़ सर लगा पहागे तस्वीर तो ने भाई जब जब संझा रोज जब आप मन संग गोट कर था ना संगवारी हो तो हमरो संझा जैन है वो बहुत ही सुघर पहाते हाँ। और ऐसे है संगवारी हो कि रोज जब आप मन बर नया नया रिकिम रिकिम के जब हम कार्यक्रम लाथन तो जैन ऐसे कार्यक्रम लाथन संगवारी हो कि आप मन बर वह बहुत ही उपयोगी रहे वैसने दिन उपयोगी कार्यक्रम में मन सुनी से औषधि और सुगंधित पौधा के खेती विषय में जानकारी दे बर हमार बीच रिसे फोन के माध्यम ले जिज्ञासा के समाधान करी से डॉक्टर एलिस तिर्की मन जेला जे इमन हा धन्यवाद और बधाई भेजे तो संगवारी आपके बधाई ला हम यहीं चले डॉक्टर एलिस तिर्की पठुआ थन संगे संग जिन जल संरक्षण के खातिर कई ठन जानकारी जो हमार कंपियर संगवारी मन दिस ओला अपन हा मन करे और मन करके पाती पठे एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आगु कौन से दिन बर पाती आए बता दीपा
0: ये दीदी आए अगला पाती 9 मई बर आए और एमा हमार संगवारी मन हा अपन अंतस के विचार ला कुछ ये रिकिम ले मेल के माध्यम ले पठो है एमा है नवागढ़ कटाई ले है नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा वर्मा ये मन के कहना है कि शनिवार के दिन के कार्यक्रम ला ले के आई श्री दीपा और लव कुमार जेन मन इमन फसल उत्पादन मा सूक्ष्म पोषक तत्व के महत्ता के बारे में हमला अच्छा जानकारी दिन और वो जानकारी बड़ हमर बर बड़ लाभ के लागी से और क्रम आज के सलाह मा विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 के बारे में डॉक्टर देवेंद्र कुरे जी मन बड़ फरिया के जानकारी दिन है जो का जानकारी जो है हमला बड़ उपयोगी लागी से सुघर गीत संगीत और कृषक प्रश्न मन जम्मो क्रम हमर मन बर मनला मोह डरी से और सफल प्रस्तुति पर चौपाल प्रभाकला ये संगवारी मन हमें गाड़ा गाड़ा बधाई दे
1: भाई ऐसे है दीपा कि अभी चलत है खरीफ फसल बर विकसित कृषि संकल्प अभियान के अवैया खरीफ फसल बर हमार संगवारी मन

0: का का जानकारी या उमर नंबर का का उपयोगी बात है, ओला जाके गांव गांव में 20 मई तक के हर गांव में हर तहसील में जिन हमार विशेषज्ञ है ना उमन जाही और हमार संगवारी मतलब बताही कि अवैया खरीफ फसल में उमन का कर सकते है, कृषि से संबंधित समस्त जानकारी उखर तक पहुंचाई। तो यही बात ला ओ दिन डॉक्टर देवेंद्र कुर्रे जी मन बड़ फरिया के जानकारी दिस और हमार संगवारी मन सुनीस और सुन के गुन के पाती पठोइस। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी और आपके जिन बधाई है तेन हमन इंचे ले डॉक्टर देवेंद्र कुर्रे जी तक पहुंचावा थन। ऐसे है दीपा कि आगू औ का चिट्ठी भाई बता।
1: ये चिट्ठी आ ही दीदी 10 मई बर रविवार दिन बर और संगवारी मन हा संगवारी मन के कहना है कि दाल के प्रसंस्करण करके हम अपन आमदनी ला बढ़ा सकथन, ये जान के हमला बड़ खुशी औ लगी से और काबर की ये विषय में बड़ अच्छा उपयोगी जानकारी हमला मिली से और क्रम आज की सलाह मा अभी ग्रीष्मकालीन सब्जी मा कीट प्रबंधन कौन रिकमले कर सकथन एला डॉक्टर ऋचा चौधरी सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र महाश्रमुंद ले एमन बताइन है जिनला जान के हम ये बेरमा करे के विचार करत हन और बड़ ये जो जानकारी है तेन बड़ उपयोगी रही से और संजय सुघर गीत ला सुन के हमार मन मंजूर नाचे ला धर लीस कुल मिला के ये दिन के कार्यक्रम है सफल प्रस्तुति खातिर चौपाल प्रभाग ला गाड़ा गाड़ा बधाई भेजे है और ये बधाई पठो है हमार संगी मन नर्मदा धाम सुरसुरी ले कैलाश यादव सुरेश यादव डेकेंद्र योगेश यादव मन
0: ऐसे है दीपा कि ए दिन के जन कार्यक्रम रहीस ना ग्रीष्मकालीन सब्जी में कीट प्रबंधन कौन रकम ले करे तो हमार कई संगवारी मन अभी ग्रीष्मकालीन सब्जी लगा है भाई हाँ। मंदिर पानी के व्यवस्था है बाड़ी है या व्यवसायिक स्तर पर भी अगर उमन सब्जी के उत्पादन करत है तो देखथन कि प्राकृतिक रूप से या कई कारण होते जेखर सेती सब्जी में कीट लग ही जाते है और जब कीट लगते ना तो हमारे किसान भाई मन ला बहुते नुकसान होते नुकसान झन हो यही जानकारी ला लेके उ दिन हमार जैन विशेषज्ञ से डॉक्टर ऋचा चौधरी ये मन ऐसा हमार संगवारी मन के बीच और बड़ा सुघर फरिया के जानकारी दी दे सुन के हमार संगवारी मन मन करी ने और जैन उमन बतई से है ना ओला अपनाए बर तको मन बात करत है और संगे संग यू विचार करत है कि अब तो हमारे लागत जिन है ओला कमती करत हन उमन जिन हिसाब से बताई हाँ, कि कीट नियंत्रण ला कैसे कर सका था ता संगवारी हो ये दिन के कार्यक्रम ला आप मन सुने और सुन के हमला पाती पठो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आपके बधाई ला हमन हा इंचे ले डॉक्टर ऋचा चौधरी तक पहुंचावत हन संगवारी हो। तो ऐसे है और आगू लिखे है दीपा कि ओ दिन के गीत संगीत ला सुन के हमर मन मंजूर जहन है वो नाचे लग गए हाँ। ऐसे है भाई ओ दिन के गीत ला सुनी नो मन हाँ। मन मंजूर हाँ। नाचल धर ले हाँ। ऐसे करथन आजो हमर संगवारी मन ला सुघर गीत सुनाथन और उखड़ संग जिन उखड़ जिन मन मंजूर है उखड़ संग हमरो मन मंजूर ला नचवा
1: बिल्कुल दीदी
0: संगवारी हो सुनथन ये सुघर गीत परशुराम यदु और संगवारी के स्वर्मा।

0: संगी हो अभी सुनेन सुगर गीत परसराम यदु और साथी के स्वर मां।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
2: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
3: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आएं पूर्ण जांच करवाएं।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
3: 47 सालों से निरंतर सेवा में
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: दीपा।
4: हाँ दीदी।
3: बाढ़त गर्मी के मौसम में हमला स्वास्थ्य के देखभाल करना बहुत जरूरी है, इसे विशेषज्ञ बताते हैं। काबर की अगर बने असन स्वास्थ्य के देखभाल नहीं करबो ना, तो हम अपन खाए पिए के लापरवाही जिसे करबो तो हमला कई ठन स्वास्थ्यगत समस्या हो सका थे।
4: हाँ दीदी, विशेषकर गर्मी में हमला ऐसे जिनिस खाना पीना चाहिए जिन हमार शरीर ला ठंडा रखे, जैसे फल में तरबूज है, खीरा है, आम है, ककड़ी, नींबू, संतरा, और ऐसने ही पिए माँ पेय जो पदार्थ है तेमा पानी के संग माँ शरबत है, जलजीरा है, गन्ना रस है, दही, मही, नींबू पानी, आम पना, ये सब हमला लेना चाहिए।
3: हाँ दीपा, एला औ फरिया के जानथन भाई, आज जानकारी है ना कि

0: अउ ये ज्यादा जरूरी घलो खोजत हे गर्मी म शरीर म पानी के कमी ल दूरवाए बर। त इही ला विस्तार ले जानबो कि गर्मी म हमर खान पान कैसे होना चाहिए अउ हमर स्वास्थ्य कैसे होना चाहिए। क्रम आज की सलाह म त क्रम आज की सलाह म आज के विषय है गर्मी म स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ अउ खाद्य पदार्थ। जानकारी दी हमर विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा सिंह, आप मन सहायक प्राध्यापक हो उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा पाटन दुर्ग। सबले पहले तो डॉक्टर मैडम राम राम, स्वागत है आपन के हमर कार्यक्रम में।
1: राम राम।
0: सबले पहले आपन बताते हो कि गर्मी में बहुत खान पान के समस्या आते, स्वास्थ्य के समस्या आते, तो गर्मी में खान पान के प्रमुख नियम का होना चाहिए?
1: गर्मी में खान पान के प्रमुख नियम देखिए क्या, एक तो हाइड्रेशन होना चाहिए, मतलब पानी की पूर्ति हो। जैसे दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करता है, तो अगर हो सके तो नारियल पानी भी पिएं। और पानी से भरपूर जो है फल और सब्जियां वो लेनी चाहिए, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, टमाटर, अंगूर, ये ले सकते हैं। जिसमें कि बहुत ज्यादा पानी हो ऐसा सब्जी फल लेना चाहिए। और पेट को ठंडा रखने वाले खाद्य पदार्थ लेने चाहिए, जैसे दही, छाछ, मट्ठा जो बोलते हैं, और लस्सी, सत्तू का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये पचने में आसान होता है और गर्मी में राहत भी देता है। इसके अलावा हल्का भोजन करना चाहिए, दाल है, खिचड़ी है, पतली रोटी है, हरी सब्जी, और खासकर जैसे घिया, तोरी, टिंडा, ये खाना चाहिए। और अगर हम पेय पदार्थ की बात करें गर्मी में, तो हमें नींबू पानी भी लेना चाहिए, बेल का शरबत है, पुदीने का चटनी है, या सौंफ का पानी जो शरीर को ठंडा प्रदान करता है, ऐसा चीज लेना चाहिए।
0: ये तो बड़ा अच्छा जीनिस बताया आपन कि भाई शरीर ला ठंडकता कौन कौन जीनिस ने मिलते वोला हमला गर्मी में सेवन करना चाहिए।
1: लेना चाहिए
0: जी। और एक संगे संगे ही बताते हो कि जैसे हम पेय पदार्थ के बात करे हैं
1: जी,
0: है ना, हमार आज के विषय ही है पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ का होते?
1: पेय पदार्थ तो एक ऐसा पदार्थ है, देखिए जो भी पीने योग्य पदार्थ है, तरल पदार्थ, वो पेय पदार्थ है, जो कि विशेष रूप से प्यास बुझाने के लिए या पोषण के लिए या आनंद के लिए तैयार किए जाते हैं। और गर्मी में हम जो ठंडे पेय पदार्थ लेते हैं, पानी है ना, वो लेते हैं, जूस लेते हैं या कोई भी शीतल पेय पीते हैं। इसके अलावा पेय पदार्थ में चाय, कॉफी भी आता है, लेकिन गर्मी में अक्सर लोगों को नहीं लेना चाहिए।
0: चाय कॉफी शरीर का
1: गर्मी देते हैं गर्मी में
0: जी,
1: वो भी पेय पदार्थ में आता है, लेकिन गर्मियों में उसको ज्यादातर कोशिश करें कि ना ले, ठंडी चीजें लें।
0: तो भाई ये तो हुई समर पेय पदार्थ के बारे में जानकारी। अब गर्मी में कहूँ बहुत देर तक के हमर पेट खाली है, कुछ खाए पिए नहीं है, तो ओकर पर का विकल्प हो सकत है?
1: उसका विकल्प क्या है कि देखिए जैसे सुबह सुबह उठते हैं हम गर्मी में, तो पहले तो गुनगुना पानी लें। रात भर के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, उनको बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी है। और फिर कोशिश करें कि रात में बादाम, किशमिश अगर हो सकता है तो भिगा के रख दे। जैसे रात में ना 4-5 बादाम आप भिगा दीजिए, और किशमिश 2-3 भिगा दीजिए, और सुबह बादाम को बिना छिलका उसका उतारे खाइए और किशमिश खाइए। इससे क्या पाचन के लिए बहुत अच्छा है गर्मी में। और जो भी ताजा फल है, पपीता, केला, सेब, जो पेट को हल्का रखता है, जो फाइबर से भरपूर है, वो खाना चाहिए। या अंकुरित अनाज खा सकते हैं। सुबह की कमजोरी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों की बहुत जरूरत होती है, तो अंकुरित अनाज, मूंग, चना, ये खा सकते हैं। और अगर जूस सुबह सुबह पीना है तो आंवला या एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। इम्यूनिटी इससे बढ़ती है, पेट की सफाई के लिए भी बहुत जरूरी है। तो सुबह खाली पेट ये विकल्प हो सकता है।
0: जैसे आप मन गुनगुना पानी के गोट करे हो कि सुबह हमला लेना चाहिए, तो का ये हर मौसम में ले जा सकते?
1: हर मौसम में क्या टॉक्सिन्स निकालता है गुनगुना पानी।
0: जी जी। और एक संगे संग एक प्रश्न करना चाहूँ, जैसे अभी लौकी के रस के
1: बहुत हाँ जी, लौकी का रस पुदीना डाल के भी ले सकते हैं, उससे भी पेट ठंडा रहता है।
0: तो भाई ये सब जिनिस के अगर प्रयोग करें तो ये अपन स्वास्थ्य पर बहुत लाभ के रही। अब एमा ये बताते मैडम कि सबले ठंडा तासीर वाला जिनिस का होते?
1: सबसे ठंडी तासीर वाली देखिए, जैसे अगर पेय पदार्थ से बात करें तो नारियल पानी है, छाछ है, लस्सी है, पुदीने का पानी है, ये ठंडी तासीर वाला है। और फल में अगर बात करें तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लीची, बेल, ये सब ठंडी तासीर वाला है। और अगर अनाज दाल में बात करें तो मूंग दाल ठंडक देता है, जौ देता है ठंडक, है ना। और अन्य चीजों में जैसे दही हो गया, पुदीना, हरा धनिया, ये सब ठंडक देता है। गर्मी में शरीर को ठंडा रखने और हाइड्रेटेड रखने के लिए जो भी पानी से भरपूर फल सब्जियां हैं, वो सभी ठंडी तासीर वाली बोली जाती है।
0: मैडम गर्मी में सबले ज्यादा फायदेमंद खाद्य पदार्थ का हो सकत है?
1: गर्मी में सबसे ज्यादा फायदेमंद खाद्य पदार्थ तो वही जिसमें पानीदार जैसे फल हो, तरबूज, खरबूज, लीची, आम, और सलाद और सब्जी होना चाहिए, खीरा, ककड़ी, टमाटर, लौकी।

0: पूरी टिंडा, और अगर पेय पदार्थ की बात करें तो आप नारियल पानी है, नींबू पानी है, बेल का शरबत है, लस्सी है, छाछ है, वही दही मही जो बोलते हैं, और पचने के लिए सत्तू जो होता है ना उसको भी ले सकते हैं, दही के साथ भी ले सकते हैं, पुदीना पेट को बहुत ठंडा करता है, वही लौकी का रस जो आप बात चर्चा कर रहे थे वो भी ले सकते हैं।
1: जैसे इमा हम अगर खाद्य पदार्थ की बात करें, जैसे हम भात बासी के या दाल के बात करते हैं, इमा का ले सकत हैं?
0: आराम से ले सकते हैं, वो बासी बोरे बासी जो
1: हाँ,
0: बोलते
1: बोरे बासी
0: विटामिन B12 का बहुत अच्छा स्रोत है, यहाँ छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही प्रचलन भी उसका है, अपने आप ही लोगों को पता है कि ठंडी तासीर वाला है, पोषण भी है उसमें।
1: तो भाई ये तो हो गए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ के बारे में जानकारी, और पेय पदार्थ ले हमला औ का फायदा मिलते गर्मी में?
0: पेय पदार्थ से ये फायदा है कि हाइड्रेशन रहता है, हाइड्रेशन मतलब पानी की कमी शरीर में नहीं होने देता, लू से सुरक्षा रहता है, क्योंकि पानी की मात्रा पर्याप्त है हमारे शरीर में तो शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, शरीर में जो तापमान है बढ़ता नहीं है, लू से हमें रक्षा होती है, इससे ऊर्जा मिलती है, ये गर्मी में कमजोरी महसूस नहीं होने देता। अगर हमारे यहाँ पानी है, पेय पदार्थ से ये सब फायदा है कि अगर हम पीने वाला ठंडक वाली चीजें पाएंगे तो हमारा शरीर का तापमान नियंत्रित रहेगा, लू वगैरह नहीं लगेगी।
1: पेय पदार्थ की कुछ और विशेषता बताते हो, कुछ उदाहरण बताते हो?
0: पेय पदार्थ एक ऐसा तरल पदार्थ है जो कि गर्मी में आराम से पिया जा सकता है, जैसे कि पानी, दूध, फलों का रस है, कोल्ड ड्रिंक भी एक पेय पदार्थ है, लेकिन वो फायदा नहीं करता है, ठंडक जरूर पहुंचाता है बट पौष्टिकता नहीं रहती उसमें। चाय कॉफी भी है पेय पदार्थ, चाय अवॉइड करना चाहिए, कॉफी है अगर आप तो ठंडा कॉफी ले सकते हैं,
1: जैसे बर्फ वर्फ डाल के
0: कोल्ड कॉफी ले सकते हैं, और आप सूप ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, आम रस है, ये सब आराम से लिया जा सकता है, यही है पेय पदार्थ।
1: अब डॉक्टर मैडम थोड़ा विस्तार से बताते हो कि गर्मी पर सबले अच्छा पदार्थ कौन से होते?
0: गर्मी के लिए बेहतरीन पेय पदार्थ कई सारे हैं, जैसे आम का पन्ना है ना, आम का पन्ना भी काफी अच्छा आम आ रहा है, कच्चे आम से बना पेय पेट को ठंडक देता है और लू से बचाता है, ये तो आराम से आम का पन्ना सभी लोग घर में बनाते हैं। छाछ हो गया, भुने जीरे को उसमें आप मिला लीजिए, काला नमक मिला लीजिए, शरीर को तुरंत ठंडक देता है। आजकल बोलते हैं गर्मी में निकलने से पहले छाछ आपको पीना है, मतलब वही मही पी के जाना है, और उसके बाद नींबू पानी है, नींबू पानी में क्या होता है कि नींबू विटामिन सी से बहुत ही भरपूर है पेय पदार्थ है, ये शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और एनर्जी देता है, इसलिए नींबू पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा नमक और चीनी मिला के नींबू के रस में उसको पीना चाहिए। नारियल पानी तो है ही, अगर उपलब्ध है तो यह बहुत ही अच्छा स्रोत है, यह इलेक्ट्रोलाइट का प्राकृतिक स्रोत है और डिहाइड्रेशन को रोकता है गर्मी में। गन्ने का रस ये हमको ऊर्जा देता है, खनिजों से भरपूर है, प्राकृतिक शीतलक है, गन्ने का रस अभी देखिए उपलब्ध है, हर जगह ठेले पे मिल भी रहा है। बेल का शरबत घर में आराम से बना सकते हैं, पाचन के लिए बहुत अच्छा है, पेट की गर्मी को कम करता है। सत्तू का घोल यह प्रोटीन से भरपूर होता है।
1: अच्छा, ये सत्तू के बारे में आपने बताया, सत्तू का जीनिस होते कैसे बनाया जाता है?
0: सत्तू क्या चना और जौ मिला के बनता है, वो दोनों ही ठंडक देते हैं, तो उसका पाउडर आप बना ले, भुने चने का और जौ का थोड़ा सा भून के और उसको पीस के रख ले, उसमें आप नमक, काला नमक, भुना जीरा ये सब बना के घोल कर दे, छोटा छोटा प्याज का काट के डाल दे टुकड़ा, हरा धनिया वगैरह डाल दे, नमक डाल के, चाहे तो उसमें आप छाछ भी मिला सकते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक पेट को ठंडा रखता है और आपको तरोताजा रखता है। मुख्य बात यह है कि ये प्रोटीन से भरपूर है, क्योंकि सुबह का जो भी खाना है वो हमें प्रोटीन होना चाहिए, तो सत्तू जो है एक प्रोटीन वाला पेय पदार्थ है, तो गर्मी के लिए बहुत अच्छा।
1: माने चना और जौ में प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलते हैं।
0: जी, और ठंडक भी प्रदान करता है।
1: तो मैडम, गर्मी में पेट ला ठंडा रखे के प्रमुख उपाय का होना चाहिए?
0: गर्मी में पेट को ठंडा रखने के लिए जो भी हमारे ठंडे पेय पदार्थ है उनको पीना चाहिए, खासकर जो घर में उपलब्ध है, अगर खीरा है तो आप खीरा खाइए, या तो उसको उसका जूस बना लीजिए और उसको पीजिए, लौकी है घर में बाड़ी में है, अच्छी लौकी है, कीटनाशक अगर प्रयोग उसमें नहीं हुआ है, क्योंकि कभी कभी कीटनाशक वाली लौकी फायदा की जगह नुकसान कर देती है, तो अगर आपको पता है घर की बाड़ी का लौकी है तो उसका आप आसानी से जूस बना सकते हैं, पुदीना पत्ती मिला के और काला नमक, सेंधा नमक, तीनों प्रकार के नमक मिला के, भुना जीरा मिला के उसको पी सकते हैं, वो ठंडा रखने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और पुदीना हर चीज में डालें आप, उससे भी पेट को काफी ठंडा मिलता है। नारियल पानी, दही छाछ, दही मही, वो तो है ही, छाछ आप नमकीन भी ले सकते हैं, मीठा भी ले सकते हैं, तो ये सब पेट को बहुत तरोताजा और ठंडक देता है।
1: मैडम, मैं एक संगे संगे को बताते हो कि गर्मी में पिए जाने वाले पारंपरिक पेय पदार्थ कौन से है?
0: पारंपरिक पेय पदार्थ तो देखिए क्या है, चटपटा आम का पना, आम
1: का पना सभी लोग, सियान मन के जमाने चले आवे थे, सियान मन तो मतलब पहली चूल्हा में ओला
0: भूनते थे,
1: भून के पका के ओला बनावे,
0: अब लोग कुकर में उबाल लेते हैं काट के और छान लेते हैं, यही अंतर है। और

0: उसमें जो भी घर में उपलब्ध है पुदीना वगैरह मिला के आराम से पीते हैं. आम का रस है ना, आम को भी निचोड़ के उसका मतलब ताजा रस निकाल के पके आम का वो पी सकते हैं. अनानास अगर उपलब्ध है वो तो बाजार से खरीदना पड़ेगा, देखिए घर में कहाँ रहता है, नहीं तो वो भी एक अच्छा है. ठंडे ही बनाते हैं, ठंडे क्या बनाते हैं, अगर दूध है तो बादाम भीगा हुआ पीस के उसमें आप ये मिक्स कर दीजिए है ना, और चीनी वगैरह सब डाल के बर्फ वगैरह आसानी से ठंडे बना सकते हैं. और जो भी आपका ये है ड्राई फ्रूट जो होते हैं काजू बादाम किशमिश भिगो के पीस के ये सब आराम से आप ठंडे घर में बना सकते हैं. पुदीना का जलजीरा भी बना सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं आसानी से, ये सब पीने के लिए मिक्स फ्रूट का रस बना सकते हैं घर में. ये पारंपरिक है जो कि हम बनाते हैं,
1: माने हमारा आसपास आसानी ले हमारे बाजार में चाहे घर में उपलब्ध.
0: हाँ, लस्सी नमकीन मीठा ये पारंपरिक पेय पदार्थ है जो हम बनाते हैं.
1: माने एला हमारे सियान मन के जमाना जो चने आवत है वो हमारा घर में आसानी ले मिल जाते है, वो हमारे अगर घर में नहीं है तो आसपास बाजार में घलो उपलब्ध हो जाते.
0: हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि जो घर का पारंपरिक पेय पदार्थ है उसी का हम उपयोग करें, क्योंकि बाहर से क्या है कि आपको फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक ये सब तो मिल जाता है रियल फ्रूट जूस के नाम से, लेकिन सब में ना वो प्रिजर्वेटिव मिला रहता है कि उसको बहुत लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए, जो कि हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है. इसीलिए गर्मी में जो पारंपरिक पेय पदार्थ है उन्हीं का सेवन करना चाहिए.
1: माने अगर हम गर्मी में पारंपरिक अपन जिनिस ले जुड़न तो हम अपन स्वास्थ्य ला बहुत अच्छा लंबा बेरा तक रख पाबो और ये गर्मी ले बांच पाबो. तो डॉक्टर मैडम आप मन बहुत सुखद जानकारी हो कि गर्मी में अपन स्वास्थ्य के ध्यान पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ ले कैसे रखन, कैसे हम गर्मी ले बाचन लू ले बाचन, कैसे पेट ला ठंडा रखन, तो अतेक सुखर जानकारी देव ये खातिर बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद
2: संगी हो. अभी सुनें क्रम आज की सलाह मा. ये क्रम मा जानकारी के विषय रही से गर्मी मा स्वास्थ्यवर्धक पेय एवं खाद्य पदार्थ और जानकारी देवत्री से डॉक्टर रेखा सिंह सहायक प्राध्यापक उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सांकरा पाटन दुर्गले और इकर संग गोट बात करी ने पूजा चंद्रवंशी हर.
3: ऐसे है दीपा, अब हमारे संगवारी मन पर एक ठीक सूचना है.
2: हाँ
3: तो संगवारी हो बता देना आप मल्ला कि अवैया शुक्रवार माने 15 मई 2026 के प्रसारित होवैया हेलो चपाल कार्यक्रम के विषय हो ही फसलों में समेकित कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन के लाभ. आपके समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई विशेषज्ञ डॉक्टर एस एम अली हुमायूं, ये मन है कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले. आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए पर हमला फोन कर सका था. फोन नंबर ये रकम ले है 400-3482, दूसरिया फोन नंबर है 400-3483, और फोन नंबर है संगवारी हो तीसरिया हमार 400-3484, और रायपुर के एसटीडी कोड है 0771. संगवारियों आप मतलब बता दें कि ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार 15 मई 2026 के बिहनिया 11:30 बजे ले 12 बजे के बीच हो ही, या ये कार्यक्रम के प्रसारण हो ही शुक्रवार के दिन 7:30 संझा में. हमला आपके फोन कॉल के अगोरा रही संगवारी हो, सूचना यहीं में सिरावत है.
2: दीदी देख अब बेरा है कृषक प्रश्न मंच की है नहीं, तो संगी मल्ला बता देते हैं हमारे आज के प्रश्न. संगी हो हमारे आज के प्रश्न है गर्मी बर पारंपरिक पेय पदार्थ का हरे. प्रश्न घाव पर देता हूँ, गर्मी बर पारंपरिक पेय पदार्थ का हरे. और संगी हो ये प्रश्न के जवाब हमारे तीर जल्दी जल्दी भेज देव ताकि अवैया जे चिट्ठी ते माँ आप मन के प्रश्न के जवाब शामिल हो गए.
3: और संगवारी हो जवाब भेजे पर हमारे ईमेल पता है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com. और अब बता दे दीपा पाछू हफ्ता का प्रश्न रही से और सही सही उत्तर.
2: पाछू हफ्ता के प्रश्न रही दीदी जैव उर्वरक के उपयोग ले का फायदा होते और एक सही उत्तर है कार्बनिक पदार्थ बढ़ते, माटी के जल धारण क्षमता बढ़ते, सूक्ष्म जीव में गतिशीलता बढ़ते और पर्यावरण संरक्षण होते.
3: और बता देता हूँ संगवारी मल्ला कि कौन कौन संगवारी मन सही उत्तर लिख के पठो है. तो ये संगवारी मन सही उत्तर लिख के मेल के माध्यम ले भेजे हैं तेंदू भाटा मगर रोल ले उमेंद्र कुमार निषाद माहेश्वरी देविका नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर चूड़ी लाइन भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैसी रेहाना बेगम मोहम्मद साजिद और हमार संगवारी आगू भेजे है सिरमुंदा ले सूरज कुमार दामले कुमारी हेमा दामले कांतिबाई दामले राजेंद्र दामले करही बदर ले है पुरुषोत्तम निर्मल कृष्ण कुमार भूपेश कुमार ब्रिजमोहन निर्मल मिशन साकरा ले है पप्पू भाई चंद्र

आकर सीमा देवी, गेंदलाल गंगबेर, सोन कुमारी गंगबेर, कसडोल वार्ड 10 लेहे समेलाल साहू, कौशल्या देवी साहू, पथरिया भरेवा लेहे चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, आप जम्मो संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। अब ऐसे है दीपा कि शुरू में है ना कि गीत संगीत सबला सुघर लागते तब भाई औ एक ठन सुघर गीत हमार संगवारी मल्ला सुनाथन अनुराग ठाकुर और कविता हिरकने के स्वर्मा।

0: संगी हो अभी सुनेन अनुराग ठाकुर और कविता हिरकने के शर्मा ये सुघर गीत।
1: दीपा देख भाई गोठियावत और अंतस के गोठला ए पार ले ओ पार पहुंचावत घड़ी की इशारा हो गए हाँ। जाए के बेरा हो गए तो जाती बिराती बता दे थन काली के कार्यक्रम काली चौपाल में आज की बात के संग किसान वाणी में क्रम आज की सलाह में पालतू जानवरों से मनुष्यों में होने वाली बीमारियां सावधानियां एवं देखभाल ये विषय में जानकारी सुनी हो डॉक्टर संजीव रायले और गीत संगीत कृषक प्रश्न मंच के रंग तको बगर ही संगवारी हो तकाली फेर भेंट हो ही तब तक नीतू शर्मा
0: और दीपा जनरल के राम राम, राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाले केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया से। आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की हैं। देव कोहली की गीत रचना, संगीत राम लक्ष्मण का है।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही

0: डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

कुमार शानू की आवाज़ में लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत जतिन ललित का है, फिल्म है जब प्यार किसी से होता है।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 8:15 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर आधारित विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, गुजरात में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 मई को सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष

0: पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि तट से टकराती लहरें सदियों से उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के जरिए ये दिखाया कि भारत शान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण करता है। 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी वो थी सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवम्बर 1947 को सरदार पटेल ने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर ये निश्चय किया कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 वर्ष पहले सोमनाथ पर पहला हमला हुआ था। ऐसे हमलों को अंजाम देने वालों का मानना था कि वे देश की भूमि की आत्मा को चकनाचूर कर सकते हैं, लेकिन वे गलत थे। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर के द्वार खुले और उन्होंने विश्व को ये संदेश दिया कि हमलावर भले ही इतिहास की धूल में विलीन हो गए हों, लेकिन भारत की आत्मा अमर है। 11 मई 1951 को अपने भाषण में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को ये संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के विभिन्न पुरातात्विक और ऐतिहासिक मंदिरों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था और इसी ऐतिहासिक अवसर को देशभर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है।
2: पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहा है। 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरोद्धार हुआ था और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की है।
1: श्रोताओं, इसी के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की थी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं मीनू पुरुषोत्तम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए नानक की लिखी ये रचना। आवाज़ मीनू पुरुषोत्तम की है।

सुगम संगीत में आज कलाकार हैं मीनू पुरुषोत्तम। इन्हीं की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं मखदूम दहलवी की ये रचना।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थीं मीनू पुरुषोत्तम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबाब अनवर। शबाब, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद शक्ति, और श्रोताओं को नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। कल गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सहित कई खिलाड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया।

0: IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है। फिलहाल बारिश के कारण मैच में कुछ देरी आई है और फिलहाल टॉस जारी है। अंक तालिका में देखा जाए तो कोलकाता 8वें स्थान पर है और प्लेऑफ के दौर में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए सब कुछ आज के मैच पर निर्भर करेगा, जबकि बेंगलुरु चाहेगी कि आज का मैच जीतें और टेबल में टॉप पर पहुंचा जाए। शबाब, इससे पहले अगर कल के मैच की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन के बड़े अंतर से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। एक रिपोर्ट।
1: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल हैदराबाद की मजबूत बैटिंग लाइनअप का सामना फॉर्म में चल रहे गुजरात के गेंदबाजों से हुआ। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए, जिसमें साई सुदर्शन के 44 गेंद में 60 रन और वॉशिंगटन सुंदर के 33 गेंद में 50 रन का बड़ा योगदान रहा। हैदराबाद से प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने 2-2 विकेट लिए। IPL में लगातार 200 का आंकड़ा पार कर रही हैदराबाद के लिए ये लक्ष्य बेहद आसान नजर आ रहा था, लेकिन गुजरात के मजबूत गेंदबाजी क्रम के आगे SRS के साथ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाए और पूरी टीम 15 ओवर पूरे होने से पहले ही 86 रन पर आउट हो गई। कप्तान पैट कमिंस ने सर्वाधिक 19 रन जोड़े, जबकि गुजरात की तरफ से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट तथा मोहम्मद सिराज और राशिद खान ने सिफाई गेंदबाजी करते हुए 1-1 विकेट निकाला। इस जीत के बाद गुजरात टाइटंस 12 मैच में 8 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद 12 मुकाबलों में 5वीं हार के बाद तीसरे पायदान पर है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैम।
0: कोई टीम क्या सोच सकती है कि हैदराबाद जैसे बैटिंग लाइनअप जो लगातार 200 की छड़ी लगा देते हैं बैक टू बैक मैचेस में, उनको हम 80-90 के स्कोर पे रोक दें और मैच उतने ही अंतर से जीतें।
2: और इसका एक रीजन भी है। देखिए, GT एक ऐसी टीम है जो एक कंप्लीट क्रिकेट टीम है। अगर देखा जाए तो जिस तरह के खिलाड़ी उनके टीम में हैं, ऑलराउंडर, बॉलर, बैटर्स, अगर आप किसी भी फॉर्मेट में उतार दें तो ये टीम आगे बढ़ सकती है, जीत सकती है। ये टीम टेस्ट मैच की भी टीम है, यही टीम T20 की भी है, यही टीम ODI की भी है, जिस तरह के खिलाड़ी हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी। साई सुदर्शन बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, आपने देखा ही होगा, स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो अगर हम GT की बल्लेबाजी की बात करें तो जिस तरह से वो आगे ले करके गए, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने उनका साथ दिया, रन्स बोर्ड पर बहुत ज्यादा नहीं था, यहाँ तो 225 और 30 भी सेफ नहीं है इस T20 फॉर्मेट, इस IPL में भी देखा। लेकिन अगर आपकी गेंदबाजी उतनी संतुलित है, रबाडा और सिराज ने शुरुआत में क्या शानदार गेंदबाजी की और उसके बाद फील्डिंग भी आपकी अच्छी है, सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो फिर आप मैच जरूर जीतेंगे, भले ही आपकी जमा पूंजी कम हो। अगर देखा जाए तो ज़्यादा स्कोर था नहीं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की गेंदबाजी है और जिस तरह का प्रदर्शन उनके फील्डरों ने किया है, राशिद खान जैसे बॉलर, एक कंप्लीट क्रिकेट टीम इस IPL में अगर मेरे हिसाब से अगर कोई है तो वो गुजरात टाइटंस है। और मैं फिर से कहूंगा ये बात कि इस टीम को आप किसी भी फॉर्मेट में उतार दीजिए, ये इसी तरह जीत हासिल करेगी। इस ये मौजूदा टीम सिर्फ T20 की नहीं है, इसमें जो खिलाड़ी शामिल हैं वो टेस्ट के भी दक्ष खिलाड़ी हैं, ODI के भी हैं और T20 के भी हैं। तो अगर ये टीम आगे बढ़ी है, इस समय नंबर 1 है, आज के मैच के बाद क्या होगा ये तो अभी समय बताएगा, चूंकि RCB पीछे है उनके, तो गुजरात टाइटंस डिजर्व करती है निश्चित रूप से। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चैंपियनशिप का खिताब वही जीतेगी, लेकिन इतना करीब पहुंच गई है, बहुत बड़ी बात है
0: जी। बिल्कुल,
2: इससे पहले किसी ने शायद सोचा नहीं होगा GT के बारे में कि गुजरात टाइटंस की टीम इस तरह से ऊपर चली जाएगी और टेबल टॉपर होगी।
0: जी बिल्कुल, शायद अनुमान नहीं लगाया होगा। और ये टीम ऐसी टीम भी है जिसने IPL की शुरुआत से लेकर कल तक, जब उसने अपना आखिरी मुकाबला खेला, इस टीम ने लगातार अपनी गलतियों पे काम किया, जहाँ पे टीम थोड़ा सा विफल हो रही थी, पीछे रह रही थी, उन चीज़ों को सुधारा है। अगर आज के मैच की बात की जाए शबाब,
2: एक तो बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, आशीष नेहरा का नाम बहुत कम लिया जाता है
0: जी।
2: एक ऐसे कोच हैं जिनकी सेवा प्राप्त है, आपने उस तरह का कोच सिर्फ फुटबॉल में ही देखा होगा।
0: जी बिल्कुल।
2: तो आशीष नेहरा की जो मेहनत है और जिस तरह से वो समर्पित रहते हैं और हर समय लाइन पर खड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको क्रेडिट कम दिया जाता है और टीम को क्रेडिट ज्यादा जा रहा है। आशीष नेहरा ने इस टीम को काफी आगे बढ़ाया है निश्चित रूप से।
0: जी बिल्कुल, आगे बढ़ाया है और कोचिंग का एक नया फॉर्मेट
2: जी क्रिकेट में,
0: क्रिकेट में देखा जाए तो आशीष नेहरा स्कूल ऑफ कोचिंग जो है ये
2: बिल्कुल
0: लगातार प्लेयर को मैसेज पहुंचाना, और सिर्फ ये नहीं कि आपको तेज खेलना है, कैसे खेलना है, कहां मौके बन सकते हैं। अगर आज के मैच की बात की

0: या शबाब तो कोलकाता है, कोलकाता के लिए ये मैच किसी डू और डाई से कम नहीं है कि आप करिए अन्यथा आप बाहर जाइए। और बेंगलुरु है तो क्या कह सकते, क्योंकि बारिश हो चुकी है, मैच ऑलरेडी एक डेढ़ घंटे देर से शुरू होगा, ड्यू फैक्टर हो या ना हो, लेकिन एक धीमापन आपको मैदान में देखने को मिलेगा बारिश के कारण।
1: या थोड़ा आउटफील्ड तो धीमा हो ही जाता है इसके बाद, रन जिस तरह से चौके आप लगाते हैं, हालांकि आप ऊपर से अगर खेले T20 फॉर्मेट है तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोशिश इसी बात की जाएगी, लेकिन यहाँ रायपुर में थोड़ा सा गेंद धीमी आती है बल्ले पर, थोड़ी सी परेशानी है, रन बनाना उतना आसान होगा नहीं। और रही बात KKR की, आपने कही इनके लिए अगर आगे बढ़ना है तो सभी मैच जीतने पड़ेंगे, आज अगर हारे तो यहीं पर इनकी सेवा समाप्त समझी जाएगी, क्योंकि अगर प्रतिशत की बात करें तो आज का मैच जीतने के बाद RCB का प्लेऑफ में जाना 93% पक्का, और अगर ये हारे तो इनकी आशा जो है उम्मीद सिर्फ 2% रह जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डू और डाई तो KKR के लिए ही है।
0: जी बिल्कुल, डू और डाई होगा और टीम चाहेगी कि अपनी उम्मीदों को आगे के लिए बचा के
1: इस तरह से लगातार जो जीत हासिल की है, जो वापसी की है, वो निश्चित रूप से उसके दो खिलाड़ी खास करके दूसरे फेस में जिस तरह से पलटे हैं, गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और बल्लेबाजी में जिस तरह से रिंकू सिंह ने फिर से अपना फॉर्म हासिल किया है, तो वो चीज अगर आज देखने को मिली तो फिर मजा आ जाएगा।
0: जी बिल्कुल, हो सकता है कि भले बारिश के कारण थोड़ा सा व्यवधान आया हो, लेकिन दर्शकों के लिए शायद बहुत सारा मनोरंजन इस मैच में भी
1: ओवर्स नहीं कटे हैं, पूरे ओवर्स खेले जाएंगे।
0: पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाल, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सुनते हैं आज खेले गए मैचों का हाल।
2: थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में आज भारत का दिन मिला जुला साबित हुआ। महिला सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सिउ तोंग को 21-9, 21-12 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि मालविका ने कनाडा की वेन यू झांग को 13-21, 26-24, 21-13 से और देविका ने जापान की नात्सुकी निदाइरा को 21-19, 13-21, 21-15 से हराया। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लोह किन यू को 21-14, 21-15 और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 21-16, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं अच्छे फॉर्म में चल रहे आयुष शेट्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि सिंगल्स में ही युवा थारून मन्नेपल्ली, उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ और अनमोल खरब भी हार कर बाहर हो गयी। उधर मिक्स डबल्स में भारत की तीनों जोड़ियों का अभियान भी पहले ही दौर में हार के साथ समाप्त हो गया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: एक मिला जुला दिन कह सकते हैं आज का, जहां आयुष के लिए शायद थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लेकिन पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत का जीतना काफी ठंडक देने वाला है।
1: या बिल्कुल, लक्ष्य सेन तो खैर निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, पीवी सिंधु ने जिस तरह का खेल दिखाया है तो उनका फिटनेस का मसला था उनके साथ, उनका खेल देख करके यकीनी तौर पर बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से आपको याद होगा कि 2024 का जो सैयद मोदी टूर्नामेंट था, उसके बाद से उन्होंने कोई खिताब जीता भी नहीं है, तो काफी गैप हो गया है, और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, जिस तरह का फिटनेस दिखाया, फुटवर्क दिखाया अपना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में काफी आगे जाने वाली है। और फिर ये थाईलैंड ओपन एक ऐसा टूर्नामेंट है कि मोस्टली भारत के जो खिलाड़ी हैं वो इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर चुके हैं, तो और BWF का जो ये 500 कैटेगरी का जो ये टूर्नामेंट होता है तो उसमें कई खिताब भारत के नाम पहले से ही हैं, भारतीय खिलाड़ियों के नाम, तो इसमें भी मिली जुली शुरुआत हुई है। कुछ अच्छे खिलाड़ी जिनके बारे में आपने बताया कि उनका सफर बहुत जल्दी समाप्त हो गया है, थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन प्रमुख खिलाड़ी पहले दौर से ही रेस में है।
0: जी बिल्कुल, रेस में है और उम्मीद होगी कि भारत के लिए, भारत की सबसे अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी जो वर्तमान में है पीवी सिंधु, कुछ अच्छे प्रदर्शन के साथ,
1: क्या जबरदस्त शुरुआत की है उन्होंने, क्या जबरदस्त, यानी कि जिस समय ओलंपिक में वो खेलती थी वो वाली सिंधु देखने को मिली है, बहुत जबरदस्त वापसी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो 2024 का जो फाइनल सैयद मोदी का, वहां से जो उन्होंने छोड़ा है वहीं से फिर पकड़ा है, और ये मोमेंटम अगर बरकरार रहा तो क्या कहना।
0: जी बिल्कुल, ये मोमेंटम एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ तक देखने को मिलता है तो बिल्कुल ये खिलाड़ी भारत के लिए कुछ और पदक और खिताब झटकते हुए नजर आएगी। गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने आज 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच वर्ग में रजत पदक जीता, बल्कि और इसी स्पर्धा में कुल 194 किलो का वजन उठा करके कांस्य पदक भी अपने नाम किया। चीन की जिनलान झाऊ ने कुल 216 किलोग्राम भार वर्ग का वजन उठा करके स्वर्ण पदक जीता, जबकि वियतनाम की होई हुइंग ग्वेन ने रजत पदक अपने नाम किया। और अगर इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो गुजरात मेजबानी कर रहा है, पहले दिन कोमल कोहर ने एक पदक भारत के लिए जीता था।

0: एशियन गेम्स पे ग्लासगो, तो तैयारी उसी की है। और उसमें जिस तरह के जूनियर खिलाड़ियों के एक पौध तैयार की गई है कोच की तरफ से, तो आप देखेंगे कि ये खिलाड़ी जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, तो आगे जो सीनियर स्तर के जो मुकाबले होंगे उसमें कई नाम आपको भारत के लिए पदक जीतते हुए नजर आएंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने नई पौध की बात की और पदक जीतने की बात की। इसी कड़ी में इस समय ताशकंद में जो एशियन अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, आज उसके अंडर 15 मुकाबलों के फाइनल खेले जाने हैं, जहां पे 15 भारतीय खिलाड़ी जो हैं स्वर्ण पदक के लिए अपना दमखम आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नज़रें वहां पर भी होंगी कि भारत कितने सोनों के साथ, कितने स्वर्ण पदक के साथ वापस लौटता है अंडर 15 कैटेगरी में।
0: ये अंडर 15 और फिर अंडर 17 अगर दोनों मिला दें तो 15 में तो सबसे अच्छा प्रदर्शन है दोनों वर्ग में भारत की तरफ से हुआ है। और देखा जाए तो पुरुष वर्ग में अगर देखें तो लक्ष्य जरूर पहुंचे फाइनल में, जो तीन खिलाड़ी बाहर हुए सेमीफाइनल, उनमें से एक मुकाबला आपने देखा होगा नमन का जो कि 70 किलोग्राम वर्ग में था, उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। जो चीज चाहिए बॉक्सिंग में, दो चीजें खास होती हैं, एक तो आपका मुक्का और दूसरे आपका फुटवर्क, तो नमन में ये दोनों चीज लक्ष्य की तरह ही देखने को मिली, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और 2-3 से वो ये मुकाबला ये बाउट हार गए, वरना ये खिलाड़ी भी भविष्य में काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाला है मुक्केबाजी रिंग में भारत के लिए।
1: जी बिल्कुल, आपके 15 से 17 वर्ष के खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो देश को कुछ नई उम्मीदें और नई किरण नजर आती है। तीसरी राष्ट्रीय डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में तमिलनाडु के गुहान सेंथिल कुमार और संदेश पीआर की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने पहले दौर में नमन सुराना और प्रणव अग्रवाल को 11-1 11-2 से हराया, तो बड़े अंतर से एक जीत दर्ज करते हुए नेशनल कंपटीशन में। और हांगकांग में 28 मई से शुरू होने वाली एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लंबी कूद के एथलीट शहनवाज खान को 48 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घरेलू प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर बुधवार को टीम का चयन किया। शहनवाज का नाम अंडर 20 प्रतियोगिता में 8.23 मीटर का रिकॉर्ड भी दर्ज है और मोहम्मद अशफाक 400 मीटर रिले में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, जबकि नितिन गुप्ता 5000 मीटर की रेस दौड़ते हुए नजर आएंगे। और पूजा ऊंची कूद में इस महाद्वीपीय अंडर 20 प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों में हैं। और एथलेटिक्स की बात है तो इस महीने के आखिरी में हो सकता है कि जैवलिन में वापस भारत कुछ और जोहर दिखाता हुआ नजर आए, डायमंड लीग इंतजार कर रही है।
0: जी हाँ बिल्कुल, नीरज चोपड़ा हालांकि इस बार कोई नया खिलाड़ी आपके सामने भारत में आएगा, लेकिन फिर भी इस मुकाबले पर तो अपना आधिपत्य भारत ने जमा रखा ही है। और जिस तरह से आप शहनवाज की बात आपने की, एक उत्तर प्रदेश का उभरता हुआ, तेजी से उभरता हुआ ये खिलाड़ी है 8.23 और सबसे कम उम्र में 8 मीटर की छलांग कूद करने वाला, ये बहुत कम ऐसे एथलीट भारत में है, तो इन पर भी नजर रखनी पड़ेगी आगे देखिए क्या होता है।
1: इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी,
0: चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट तो है ही है।
1: जी बिल्कुल, इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी और इनकी उपलब्धियों पर। श्रोताओं समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, शबाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया, भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
3: खरीफ के लिए

0: जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त

0: अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the four European countries.
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना।

0: करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रुपए पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government

सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मुकंदर का सिकंदर का गीत। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है अनजान ने और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जॉनी मेरा नाम का गीत। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है, संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये गीत। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने और गीत रचना नीरज की है।

0: इसी के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 9:30 होने को हैं। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: चर्चा का विषय है।
2: दुनिया की नब्ज पश्चिम एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
4: थैंक्स।
2: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हम सब

0: जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
1: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
3: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं

0: जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहाँ सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36 thousand metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू

0: बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
0: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
2: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है, उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग भी विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय ये रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन

0: गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिस्ट्रप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसको यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घ

0: कालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध हैं और लॉन्ग टर्म संबंध हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है। और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं। और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ भाग से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध है तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको

0: का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उबरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए फिल्म घरौंदा का गीत रूना लल्ला की आवाज़ में। गीत लिखा है नक्श लियालपुरी ने, संगीत जयदेव का है।

आइए अब सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को, जिसके लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है। फिल्म है शागिर्द।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे सनम से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत लिखा है मर्जरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया है ओपी नैयर ने।

फिल्म छोटी सी बात का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें के यसुदास और आशा भोसले की थी। गीत रचना योगेश की थी और संगीत दिया था सलील चौधरी ने। आइए इस गीत के बाद अब सुनते हैं फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की थीं। बोल शैलेंद्र के थे और संगीत शंकर जयकिशन का था। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जूली का गीत। आवाज़ प्रीति सागर की है, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता से राग जय जयवंती में सरोद वादन। आलाप और जोड़ के पश्चात दो गतें विलंबित और द्रुत दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगत की है बंसीलाल धानुक ने।

अभी आपने सुना पंडित बुद्ध देव दास गुप्ता का राग जय जयवंती में सरोद वादन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: मीडिया वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण।

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound